FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से ठीक थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 301। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, भाग चौथा आज प्रसारित किया जाएगा। इसका कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 से सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज 44वां भाग प्रसारित किया जाएगा इस श्रृंखला का। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता ऋषि कपूर पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 से सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, संवादक हैं ममता सिंह, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। सुबह 11 और रात्रि 11 से सुनेगा रंग तरंग, दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से। दोपहर 2 आपको सुनवाएंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका 44वां भाग आज प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे।

हेलो सहेली, ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से। संपादक हैं सोनाली पाठक, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण तराने नए पुराने। शाम 5:30 से शाम 6:35 से सुनिएगा संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। इसके अंतर्गत फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत का 9वां भाग प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका हीरों का हार, लेखन रमेश उपाध्याय का, निर्देशन सत्येंद्र शरत का। रात 8:15 से चित्रलोक। रात 9 बजे से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेखन स्वर जी श्याम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेखन स्वर पूजा नारायणिया का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम।

भगवान शिव, शंख और चंद्रमा की सी कांति वाले, काल के समान भयानक सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रिय, काशीपति, कल्याणकारी कल्पवृक्ष, गुणों की राशि और कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो सत्कर्मियों को अत्यंत दुर्लभ मुक्ति दे डालते हैं। इन देवाधिदेव महादेव से तुलसीदास जी ने अपने कल्याण के विस्तार की मंगल कामना की है। सागर तट पर वानर सेना समुद्र लांघने को तत्पर खड़ी है। श्री राम अपने सहयोगियों से पूछते हैं, अब विलंब क्यों हो रहा है? जामवंत तथा हनुमान प्रभु रामचंद्र की महिमा का बखान करते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है, और स्वागत है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की विशेषताओं की बात हो रही है, हम ये जो गायकी है किराना घराने की उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आज कौन सी विशेषता है इस घराने की जिस पर आप हमें जानकारी देंगी?
2: श्रुति का जो हम सूक्ष्म और सटीक ऐसा प्रयोग करते हैं घराने में,
1: जी जी,
2: एकदम सूक्ष्म अंतर। श्रुति मालूम है आपको ना, दो स्वरों के बीच में
1: जी,
2: जो स्वर जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे जिस स्वर रहते
1: हाँ हाँ,
2: उसे हम श्रुति कहते हैं
1: जी।
2: सा और रे उसके बीच में, वैसे तो 22 श्रुति मानी गई है
1: हाँ।
2: सारे गम पधनी
1: हाँ।
2: उसमें, लेकिन असंख्य है श्रुतियाँ
1: जी, जी।
2: ये नियमित रियाज और स्वर साधना उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: वैसे तो सब घराने में दिया जाता है, लेकिन किराना घराने का जो रियाज है
1: हाँ।
2: उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। तो फिर श्रुति का सूक्ष्म और सटीक प्रयोग
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर मधुर और प्रभावशाली बनता है
1: जी।
2: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई निखार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति आती है
1: जी।
2: स्वर में स्थिरता और नियंत्रण विकसित किया जाता है
1: जी।
2: लंबे लंबे आलाप और एक स्वर पर टिके रहने की क्षमता स्वर साधना से प्राप्त होती है। किराना घराने में स्वर साधना को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इस घराने की गायकी स्वर प्रधान मानी जाती है, जहां मेंड श्रुति और स्वर लगाव पर विशेष बल दिया जाता है।
1: अच्छा,
2: स्वर साधना केवल तकनीक नहीं बल्कि साधना और आत्मानुशन का एक माध्यम है।
1: अच्छा,
2: यही साधना कलाकार की गायकी को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
1: बिल्कुल सही।
2: इसीलिए ये जो हम बोलते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लेते हैं जब हम गाना सुनते हैं। इसीलिए मैं नहीं जानती मैं कितना ये जो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर न्याय दे सकूंगी, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगी।
1: तो कौन सा राग आपने चुना है?
2: अहिर भैरव।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनने के बाद राग अहिर भौरव पर आधारित विजेता फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: वाह क्या बात है,
0: जो आशा भोसले जी और सत्यशील देशपांडे के स्वरों में। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। प्रातः के 7 बजे हैं, सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, कृष्ण का नाम लेते ही चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। किसी को कृष्ण में अपना सखा दिखाई देता है तो किसी को मुरली की मधुर धुन सुनाई देती है, किसी को राधा कृष्ण का प्रेम याद आता है तो किसी को कुरुक्षेत्र में खड़े कृष्ण का विराट व्यक्तित्व दिखाई देता है। कृष्ण केवल मंदिर में रखी एक प्रतिमा का नाम नहीं, कृष्ण तो जीवन जीने का एक अंदाज है। जहां परिस्थिति कठिन हो वहां मुस्कुराना कृष्ण है, जहां उलझन हो वहीं सच्ची सही रास दिखाना कृष्ण है, जहां दोस्ती हो वहां उसे दिल से निभाना कृष्ण है, और जहां कर्तव्य सामने हो वहां पीछे न हटना भी कृष्ण है। तो आज जन्माष्टमी पर बात करते हैं उसी कान्हा की,

दोस्तों, हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां कृष्ण का नाम अनजाना हो। लेकिन जरा गौर कीजिए, कृष्ण को कोई लड्डू गोपाल कहता है, कोई कन्हैया, कोई मुरलीधर, कोई गोविंद, कोई माखन चोर और कोई योगेश्वर। एक ही व्यक्तित्व के कितने रूप, यही कृष्ण की सबसे खास बात है। वे हर उम्र और हर मन के करीब दिखाई देते हैं। बच्चों को उनका बाल रूप पसंद आता है, युवाओं को उनका आत्मविश्वास, बड़ों को इनकी सीख और जीवन की उलझनों में फंसे व्यक्ति को उनका मार्गदर्शन।

दोस्तों, कृष्ण की पहचान में बांसुरी का विशेष स्थान है, लेकिन बांसुरी हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है। बांसुरी अपने भीतर कुछ जमा करके नहीं रखती, वह खाली रहती है और इसी खालीपन से संगीत पैदा होता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर मन हर समय शिकायतों से भरा रहे, गुस्से से भरा रहे, अहंकार से भरा रहे, तो उसमें नई खुशियों के लिए जगह कहाँ बचेगी। इसीलिए जन्माष्टमी पर एक छोटा सा सवाल खुद से, क्या मेरे मन में थोड़ी जगह खाली है नई खुशियों के लिए। शायद यही बांसुरी का सबसे सुंदर संदेश है।

दोस्तों, कृष्ण का नाम आते ही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों याद आता है? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही हमें बताता है कि गंभीर होना और तनाव में रहना एक ही बात नहीं है। जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर जिम्मेदारी को माथे पर चिंता बनाकर रखना जरूरी नहीं। कभी कभी मुश्किल परिस्थिति में भी मुस्कुरा लेना अपने आप में एक ताकत है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, परिस्थिति हमेशा आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन उसके सामने आपका रवैया आपके हाथ में जरूर हो सकता है।

दोस्तों, कृष्ण का जीवन हमें एक और खूबसूरत बात बताता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी द्वारिका, लेकिन कृष्ण हर परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। स्कूल बदलते हैं, नौकरी बदलती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमें अपने भीतर की अच्छाई नहीं बदलनी चाहिए। परिस्थिति बदल सकती है, हमारे संस्कार नहीं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर हम घर सजाते हैं, मंदिर सजाते हैं, झूला सजाते हैं, लेकिन इस बार एक और जगह सजाइए, अपना मन। थोड़ी नफरत हटाइए, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, किसी से मन मुटाव है तो बात कीजिए, किसी की ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। इससे अच्छी जन्माष्टमी की शुभकामना और क्या होगी।

तो दोस्तों, आज की जन्माष्टमी पर हमने कृष्ण को याद किया, सिर्फ भगवान के रूप में ही नहीं, उन्हें हमने देखा एक मुस्कान की तरह, एक मित्र की तरह, एक बांसुरी की धुन की तरह महसूस किया और एक मार्गदर्शन की तरह समझने की कोशिश की। कृष्ण का जीवन हमें यही याद दिलाता है, जीवन में उलझने आएंगी लेकिन मुस्कुराना मत छोड़िए, रास्ते कठिन होंगे लेकिन कर्म करना मत छोड़िए, लोग बदलेंगे लेकिन अपना अच्छा स्वभाव मत छोड़िए। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे कुमार सानू को। जावेद अख्तर का गीत था, संगीत आर डी बर्मन का।

अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में आप सुन रहे थे कयामत से कयामत तक फिल्म से ये गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत आनंद मिलिंद का।

बाजीगर फिल्म में आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और अलका याग्निक को। गौहर कानपुरी का गीत था, संगीत अनु मलिक का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5

0: 50 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और जीई एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ

0: साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आपने सुना महेंद्र कपूर और भूपेंद्र को।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
8: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे चित्रा सिंह को, और इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
3: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन

0: याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
1: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है। उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है। आइए सुनते हैं।
1: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
1: जी
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की।
1: जी
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
1: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
1: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
1: जी,
0: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाईं
1: जी,
0: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
1: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
0: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
1: जी,
0: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
1: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
0: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
1: जी।
0: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
1: तो वे भारत क्यों आए?
0: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
1: जी,
0: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
1: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
0: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
1: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
0: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
1: जी।
0: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
1: जी।
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
0: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती

0: कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहाँ के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा

0: कौन होगा बाबा?
1: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
1: भाई बता दूंगा ना बेटी।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
1: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
0: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
1: सच्ची भाई?
0: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
2: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी।
6: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
6: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
6: रानी सा की जय हो।
7: आओ सखी, भीतर आओ।
6: जी, वो
7: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
6: वो कुछ नहीं।
7: कहो न सखी, क्या बात है?
6: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का

0: प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत
1: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
0: पर हमें तनिक शंका होती है।
1: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
0: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या क्या मालूम विष्णुत्व?
2: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
0: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
0: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
0: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
0: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।

0: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
2: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर मेरा भाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: इतनी मधुर आवाज़।
2: हाँ।
3: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए।
3: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सुना सुना लगेगा।
0: हाँ बहुत सुना हो जाएगा।
2: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
6: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थीं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: Lo mi thai kho.
1: ये लो ये लो मिठाई खाओ।
0: तुम भी लोग खाओ मिठाई। ये लो तुम भी लोग।
2: मैं तो अपने जन्मदिन पर

0: केक खाता हूँ।
1: मैं भी
2: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
0: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
1: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
3: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
3: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
3: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
4: हाँ, ये बात तो ठीक है,
3: हो गई दुगनी।
2: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
3: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
5: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
2: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
5: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
4: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
0: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
6: 300 किलोग्राम?
1: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती
4: है? और चीटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
5: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
0: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम सोचो डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
5: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
11: शान और कैलाश।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय आम चुनाव में कल नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रक्रिया के तहत आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में कल पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षण कार्य भी दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का पर्यवेक्षण 7 से 14 सितंबर तक रहेगा, जो सदस्य पद की मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगा। वहीं दूसरे चरण का पर्यवेक्षण 21 से 22 सितंबर तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक किया जाएगा। बैठक में श्री सिंह ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और संबंधित नियमों की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियो सिंक्रोनाइज कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी नवाचार के तहत राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर ई विजिटर सुविधा की शुरुआत की है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ओर से शुरू की गई सुविधा से होटल, धर्मशाला और व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले आगंतुकों का विवरण अब मोबाइल फोन से ही दर्ज किया जा सकेगा। इससे खासतौर पर छोटे होटल और धर्मशाला संचालकों को राहत मिलेगी। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के मौके पर इस महीने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस शपथ अभियान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से 10 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर संदीप रेवजी राठौड़ ने कल नई दिल्ली में इस योजना पर चर्चा करने के लिए दो उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें की। उन्होंने बताया कि यह शपथ अभियान एक ऐसी पहल है जिसके तहत लोग स्वेच्छा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के शिकार लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। इसका मकसद लोगों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और उनमें नशीले पदार्थों से दूर रहने की जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षक दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है।
यह दिन समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को याद करने का अवसर है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस साल कुल 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 48 स्कूल शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाले शिक्षकों को हर साल प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश से भी 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेगा। चाकसू के टुमली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉक्टर देवेंदु सेन को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रशिक्षित करने के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी पर आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजन किए जा रहे हैं।

0: मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की विशेष झांकी भी सजाई जा रही है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां मंगला आरती के पहले से ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे हैं।
1: ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज कृष्ण जन्माष्टमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की और राधे राधे जय श्री कृष्णा के जयकारे।

0: जायमान हो रहे हैं। ठाकुर जी का माखन मिश्री से भोग लगाया जा रहा है। बिहारी जी मंदिर को आकर्षक रोशनी व फूलों से सजाया गया है। ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण कराकर अलौकिक श्रृंगार किया गया है। शहर की नदिया गोपाल मंदिर, राधा रमन मंदिर में आज दोपहर को नंदलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रद्धालु निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: इधर राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी मंदिरों में नंदलाल के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। यातायात के सुगम संचालन के लिए परकोटा क्षेत्र में चलने वाले परिवहन साधन ई रिक्शा, ऑटो, सिटी और मिनी बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो के फेरों की संख्या बढ़ाकर 218 कर दी है। अंतिम मेट्रो ट्रेन का संचालन मानसरोवर से रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से रात 1:10 तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुंछरी के लौटा पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने तथा लोक कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का भगवान श्री कृष्ण का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान दें। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। धौलपुर से तेज बारिश के समाचार हैं। सवाई माधोपुर और कोटपुतली बहरोड में भी कल देर रात से ही रुक रुक कर हल्की बरसात का दौर बना हुआ है। इससे पहले कल 7 शहरों में 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के उज्जैन में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी बरसात हुई। डीग, कामा, नगर, धौलपुर और करौली सहित कुछ अन्य शहरों में 1 या 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 दिन तक जारी रह सकता है। विभाग ने आज 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
2: अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले 1 सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी अलवर का ये सरीज का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
4: तो कभी परम दिव्य साईं,
5: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं, आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकलसन और शशि ने गाया, इसे समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओ, आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के हैं बोल और मिथुन की है तर्ज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजतपट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे, आपके मन में रजतपट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने ये जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
0: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
1: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानों में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिंपल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिंपल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे अब जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिंपल की थी, डिंपल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस, मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिंपल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रूमानी हीरो बने। कमाल की बात ये भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे, नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बंध

बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थी। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

0: कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।
1: तू कितने बरस का?
2: तू कितने बरस की?
1: मैं 16 बरस की।
2: तो मैं 17 बरस का।
1: 16
2: 17
1: 17
2: 16
1: मेरा जाए नैना।
0: हीना की हीरोइन जेबा बख्तियार हूँ।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचेंगे

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए। आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल

0: जाओ, तुम लोग सब जाया जाए, जाओ कमाओ।
1: किलियन से मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है। जमीन पे नहीं, पीठ पे खड़ा किया ऐसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे। दफा कर इन सबको।
2: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
3: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यही मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोगे ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो। नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें, ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ ऐसा देखो। उन्होंने हार नहीं मानी, एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं एक्चुअली सही मानो उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी थोड़ा, मैंने कहा अच्छा तू मुझे कुछ सीन्स वीन सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं, देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूँ कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
4: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला, ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी।
3: तो ये अवार्ड सही मानो में उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
2: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
5: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो, वो एक फोन करना था।
6: अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है?
5: अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से।
6: अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा।
7: वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है।
2: इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार,

0: अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।
1: कब

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लेते हैं छोटा सा विराम।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
7: अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो, फरमाइश।
8: हेलो, मैम नमस्ते।
7: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
8: जी, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, महर एमपी से।
7: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
8: महर, महर से बात कर रहा
7: हूँ। महर से? भाई महर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
8: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
7: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
8: जी, फिल्म एक

0: इतिहास सुनवा दीजिएगा और गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगे।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम
1: जितेंद्र
0: आपका?
1: भाई, जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: क्या करूँ,
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा। बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है? और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा, बढ़िया। तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है?
1: जी जी जी
0: जी। बताइए, गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी। और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज़ सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज़ तो पहचान चुकी हूँ मैं
1: जी। हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदाना का इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही है इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में ये टप में पानी लेके बर्तन मांजते, ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता तो बहुत गुस्साती चिल्ला देते हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे जीवन में छाएगी छाएगी छाएगी कभी कोई बद

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट है वारंगाफाटा, तालुका कळमनुरी, जिल्ला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगाफाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे
0: जी जी जरूर।
1: खिचड़ी का
0: हाँ, तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी, तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए, पर
1: हाँ नाश्ते में खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी
0: हाँ
1: और भजिया मिलता है।
0: तो बना भी लेते
1: में
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
1: नहीं नहीं बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ होटल है, होटल है।
0: अच्छा,
1: वारंगाफाटा में होटल है।
0: क्या बात है, अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगाफाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का, महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस रहती
1: है। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी। जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले भटूरी।
0: अच्छा,
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए, पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं और बहुत सारी फिल्मी
1: पंजाबी, जैसे जैसे ये एक लाइन है।
0: हाँ,
1: पेके जान वाली है नी किन्ना, और होनी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया,
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर है, जो प्रोग्राम चलता है ना।
0: हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी।
0: और अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: सैर
1: करो,
0: बिल्कुल,
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: आप किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल,
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा, वाह।
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं, उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो बात खास होनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था उस टाइम, 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये
1: जी,
0: आपने जी, अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्में देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में, आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी। इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम। आपको सुना रहे इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ, देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे

0: बार भी वैसे दीवाना है
1: जी। ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब बताइए
0: धन्यवाद मैडम जी,
1: क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टेलरिंग शॉप है मेरा करोड़ रायपुर में मोहन जय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश दिवांगन और तुषार दिवांगन फैशन डिजाइनर है।
1: अच्छी बात है, क्या बात है।
0: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं, और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
1: जी जी।
0: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं, और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनते जा रहा है, बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं और उस आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
0: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी, सुबह वो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
1: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
0: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल जवाहर के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
1: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है, आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
0: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
1: बाल रूप।
0: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नटखट जो होता है ना,
1: नटखट
0: अच्छा लगता है मैडम जी।
1: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
0: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद।
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए।
0: जी अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुम

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं, बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी मैम। और गाना किस तरह का पसंद करते हैं, पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: ठीक है।
0: फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो
1: मैडम,
0: गया ना
1: हाँ हाँ
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: में
0: जाती?
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है,
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिले मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन
1: मैम
0: किया।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ महबूबा ओ मह

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको निमिशोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।
0: वहाँ पर खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी, यहाँ इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
1: यहाँ पे? ज्यादा धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ, बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है, यहाँ
0: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनमर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है
0: जी। तो बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे रिकॉर्ड है कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: खुशियाँ। तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और, 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह द्वारा आगामी निकाय चुनावों की तैयारी का सजीव कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माइक पर मुखिया। अभी राजस्थान में 309 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। मतदान 9 और 11 सितंबर 2026 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी। इन चुनावों में 10,245 पार्षद पदों के लिए मतदान होना है। राजस्थान में पंचायतों और नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी प्रशासनिक शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे और जन विकास में दशकों तक अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। इतिहास में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त श्री राजेश्वर सिंह जी ने अपने दीर्घ प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान जयपुर और जालौर के जिला कलेक्टर, जयपुर, भरतपुर व उदयपुर के संभागीय आयुक्त तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के शीर्ष पदों को सुशोभित किया है। इसके साथ ही आप राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव की एक लंबी यात्रा और जनसेवा के प्रति अनूठे समर्पण के साथ आइए स्वागत करते हैं श्री राजेश्वर सिंह जी का। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, बातचीत का सिलसिला हम सर के साथ शुरू करें। श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो स्टूडियो में मौजूद राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत कर सकते हैं। हमारे फोन लाइन जो है, स्टूडियो नंबर है वो हम आपको बताए देते हैं, 01412200600, 01412200700 और 01412200800, और साथ ही आप फोन कर सकते हैं 01412366477। चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद जैसे स्थायी निकाय सीधे रोजमर्रा के जीवन से लोगों के जुड़ाव में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नगर निकायों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी नजर में?
1: देखिए, ऐसा है कि जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हों या पंचायती राज संस्थाएं हों
0: जी,
1: वो एक तरह से लोकतंत्र की आधारशिला हैं और उनके माध्यम से जनसाधारण को

0: एक शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष सहभागिता का सुअवसर प्राप्त होता है
1: जी।
0: और स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही निपटाने में मदद मिलती है, ताकि जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो ज़्यादा बड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें
1: जी।
0: तो इस लिहाज से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोकतंत्र का जो है ना आधार स्थली है और जो बेसिक ढांचा है ये भारतीय लोकतंत्र का
1: जी। बिल्कुल सही बात। अब आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या होती है, आम मतदाता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर और काम को आप किस तरह सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं।
0: देखिए, जो संसद और विधानसभा है उसके चुनाव के लिए तो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और राज्य में जो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त पद की व्यवस्था की गई है
1: जी।
0: ये एक सदस्यीय आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग और आयुक्त में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही संस्था है। और इसका जो मुख्य काम यह है कि जो निर्धारित समयावधि है उसमें अपन जो है नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ये संपन्न करा दें
1: जी। 38,000 कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल हैं, 309 निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं, औसतन 100 से ज्यादा प्रत्याशी एक सीट के लिए दावेदार है और चुनाव चिन्हों का आज आवंटन भी प्रत्याशियों को हो जाएगा। तो ये जो चुनाव चिन्ह होता है सर, कितना निकायों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये चुनाव चिन्ह, जो हमारे प्रत्याशी रहते हैं, मतदाता जो हैं कैसे पहचान सकते हैं प्रत्याशियों को, उसकी पहचान माने जाते हैं चुनाव चिन्ह?
0: देखिए, ऐसा है कि हमने जो है जो नगरपालिका सदस्य हैं उनके लिए 40 मुक्त प्रतीक इसकी व्यवस्था कर रखी है
1: जी।
0: और वो सिंबल जो है वो प्रत्याशी अपने इच्छा अनुसार जो है चुन सकता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे 8 जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिसमें 6 तो राष्ट्रीय दल हैं और 2 राज्य स्तरीय दल हैं
1: जी।
0: तो उनके जो अपने चुनाव चिन्ह जो है वो आरक्षित हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम के प्रथम अक्षर से जो है उसको हम संयोजित करते हैं और अल्फाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं मतपत्र में, और उसके बाद जो ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये लोग मुक्त प्रतीक का चयन करते हैं और उसमें से उनको जो है अरेंज किया जाता है मतपत्र पर। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए टेलीफोन है एक मुक्त प्रतीक है, तो अगर 2 सदस्य जो है या 2 कैंडिडेट जो है वो एक ही चिन्ह चाहते हैं तो उनके बीच में लॉटरी निकाली जाती है। तो इस तरह से इसका फैसला होता है
1: जी, जिसके हाथ पे पहले वो निशाना आया लॉटरी के जरिए तो उसी को आवंटित कर दिया जाता है। अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, निकाय चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारियां हैं सर, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए, ऐसा है कि जो हमारी मशीनरी है वो तो जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ही है। हम उन मतलब जो जितने राजस्थान के 41 जो है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हैं वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी है
1: जी।
0: और फिर 309 जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए अलग से हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर की व्यवस्था कर रखी है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के SDM स्तर के अधिकारी होते हैं। तो ये तो ढांचा है जिसके माध्यम से चुनाव होता है। इसके बाद जो है मतदान केंद्र हैं, तो पूरे राजस्थान में जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें 16,482 मतदान केंद्र हैं। तो हर मतदान केंद्र के लिए हम एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की और कुछ पोलिंग ऑफिसर्स की व्यवस्था करते हैं
1: जी।
0: तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पूरे उस मतदान प्रक्रिया के इंचार्ज होते हैं। तो वो जो है वहाँ पर अपने जो EVM वगैरह है वो लेकर के जाएंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे
1: जी।
0: उसमें जो मतदान अधिकारी हैं वो उनका सहयोग करते हैं। बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर जो है वो पुलिस बल की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो है हमारे सारे जोनल और एरिया मजिस्ट्रेट

0: वो जो है वो निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, उनके साथ पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज भी होती हैं। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है हर जगह कि मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो जाएंगे।
1: जी, कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके।
0: जी,
1: कई बार कहा जाता है कि राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी की शुरुआत स्थानीय स्तर से होती है, क्या निकाय चुनाव युवाओं और नए उम्मीदवारों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और राजनीति में अपनी भूमिका शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह होते हैं? वो जोरों शोरों से लगे रहते होंगे अपने आप को दिखाने के लिए।
0: यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली क्या है कि 18 साल की उम्र में तो आदमी मतदाता बन जाता है और 21 साल की जो उम्र है उसमें वो पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकायों का चुनाव लड़ सकता है।
1: जी।
0: तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी, बहुत से लोग तो अध्ययनरत भी हैं, एमए वगैरह की लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की कर रहे हैं और वो भी जो है इस चुनाव में कैंडिडेट हैं। तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक तो अवसर है, दूसरे क्या है कि वो अपनी कार्य क्षमता और दक्षता और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता ये प्रदर्शित करने का एक साधन भी है। तो और इसके माध्यम से जो है वो जो संसदीय और विधानसभाई राजनीति है उसमें उनकी एंट्री हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और निश्चित रूप से जितने ज्यादा युवा होंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उत्साही और ऊर्जावान भी होंगे अपने उम्र के हिसाब से, और वो निश्चित रूप से अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपनी भागीदारी निभाएंगे।
1: जी, श्रोता जो हैं, हमने शुरुआत की जब हमारे कार्यक्रम की तो श्रोताओं से कहा था कि आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो एक बार फोन कॉल लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सवाल है उनके आपके लिए। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: मोहम्मद रफीक।
1: हाँ जी मोहम्मद रफीक जी, अपना सवाल करें।
2: मैम आज किस विषय पे चल रहा है?
1: माफ कीजिएगा। अच्छा, आप अभी जानते नहीं है टॉपिक। ऐसा कीजिए, आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस चीज पर हमारी जो है चर्चा चल रही है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, हेलो।
2: हाँ, ये पंचायत राज से संबंधित कार्यक्रम रेडियो जयपुर।
1: हाँ जी, हाँ बोली।
2: मेरा
1: अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम रणविजय।
1: रणविजय जी, अपना सवाल करें।
2: मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो पंचायत राज का जो कानून भारतीय संविधान है उसमें सिंबल जो है नगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सिंबल प्रदान नहीं होता है।
1: अपना प्रश्न थोड़ा सटीक रूप से रखेंगे, स्पष्ट रूप से रखेंगे।
2: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स यू, राजेश्वर सिंह जी नमस्कार, कि नगर निकाय और पंचायत राज में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है।
0: नहीं, इसमें ऐसा है कि जो हमारे यहाँ राजस्थान पंचायती राज एक्ट और रूल्स बने हुए हैं और म्युनिसिपल जो
2: एक... तो ये राजस्थान का एक्ट भारत के संविधान से अलग है क्या?
0: नहीं,
2: राजस्थान का संविधान भारत के संविधान से अलग चल रहा है?
0: नहीं, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
2: नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू दैट देयर कैन नॉट बी नो सिंबल
0: आपकी
2: नगर पालिका इन पंचायत राज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
0: आपकी जानकारी सही नहीं है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसके जो चुनाव है वो निर्दलीय आधार पर होते हैं, उसके बाद जितने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है और नगर पालिका और नगरीय निकायों के चुनाव है वो पार्टी सिंबल के आधार पर भी होते हैं और निर्दलीय आधार पर भी होते हैं, और वो पूरा भारतीय संविधान के अनुरूप है।
1: अगले श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
3: हेलो,
1: अपना नाम बताएं।
3: मैं सीतू सैनी चौमू सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: सीतू जी, अपना सवाल करें।
3: मेरा सवाल सर से ये है कि आपने मतलब रेडियो मतलब चुनाव की बात या फिर चुनाव से रिलेटेड जनता को अवेयर करने के लिए आपने रेडियो ही क्यों चुना?
1: जी
0: देखिए, ऐसा है कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है ये लोकप्रिय माध्यम है और बहुत सारे जो दूरदराज के इलाके हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें जो लोग जो है आकाशवाणी के निरंतर वो श्रोता हैं, तो उस लिहाज से जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुँचे, और मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं

0: पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज के इलाके के लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचे और उनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान हो सके, इसके लिए माध्यम चुना गया है।
1: जी, लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं और इसी दौरान बीच हम भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। सर, आज चुनाव प्रचार का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया भी बन चुका है। कई बार सोशल मीडिया पर गलत खबरें, भ्रामक सूचनाएं और प्रचार सामग्री तेजी से वायरल हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर होने वाले चुनाव प्रचार और भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर किस तरह से नजर रखता है और क्या कार्यवाही करता है?
0: देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट बना हुआ है
1: जी,
0: और जो ही इस तरह की कोई भ्रामक स्थिति पैदा होती है
1: जी,
0: तो उसके बारे में हम लोग तुरंत जो है वो स्पष्टीकरण वगैरह जारी कर देते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ 24 आवर्स के लिए कार्यरत जो है वो नियंत्रण कक्ष भी है, तो वहाँ से भी लोग जो है वो इन भ्रामक सूचनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक, और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइक पर मुखिया कार्यक्रम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं 01412200600 या फिर 01412200700। इसके अलावा दो फोन लाइंस और हैं 01412200800 और 01412366 6677।

एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी श्रोता अगर बातचीत करना चाहते

0: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी श्रोता अगर बातचीत करना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है 01412200600, 01412200700, 01412200800, और इसके अलावा एक और फोन लाइन है 01412366477। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल सर आपसे ये करना चाहेंगे कि मतदान के लिए मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। वोटर लिस्ट बनाना चुनौतीपूर्ण रहता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कई लोग अपने निवास स्थान से दूसरे शहर में बस जाते हैं, तो उनको मतदाता सूची में कैसे अपडेट किया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहता है?
1: देखिए, ऐसा है कि जो मतदाता सूची बनाई जाती है
0: जी,
1: तो उसमें आम तौर पर जो उस इलाके में निवास करने वाले लोग हैं उनको शामिल किया जाता है
0: जी।
1: और जो भी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र जिसने प्राप्त कर ली उसका वो नाम जुड़वाने के लिए पात्र हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो एब्सेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं उनके नाम हम लोग डिलीट कर देते हैं
0: जी।
1: तो उसके बाद से फिर ये फाइनल जो हमारी मतदाता सूची है वो बन जाती है। और उसमें जो एडिशन डिलीशन का काम है, जो हमारा नॉमिनेशन पेपर जो है लेने का आखिरी दिन था उस दिन तक जो है हम लोगों ने नगर पालिका में जोड़ा है
0: जी।
1: पंचायतों में इसको हम जो है चुनाव घोषणा तक जोड़ते हैं
0: जी।
1: तो वो निरंतर अपडेट होती रहती है
0: जी। और मतदान का सब जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान के दिन मतदाताओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो, मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और हमारे लिसनर्स के जरिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं वो सुचारू रूप से, खुद कैसे योगदान दे सकते हैं मतदाता?
1: देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
0: जी,
1: नंबर वन
0: जी।
1: नंबर टू जो है आपके पास जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने अलाउ किया है, जिसमें जैसे मान लीजिए नरेगा कार्ड है, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बहुत सारे जो मतदाता के पास आधार कार्ड है, तो ये सारी चीजें लेकर के आप अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता की मदद के लिए हर मतदान केंद्र के बाहर एक वोटर हेल्प डेस्क, मतदाता सहायता डेस्क का जो है वो प्रावधान किया गया है
0: जी,
1: जो कि स्थानीय बीएलओ वहां पर रहते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, और प्लस जो स्थानीय कर्मचारी वगैरह होते हैं वो उनकी मदद के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर मान लीजिए वो मतदान केंद्र नहीं है मतदाता का, किसी बगल के मतदान केंद्र में जो है उनका वोट पड़ना है, तो वो भी उनको उस दिन गाइडेंस वो दे देंगे। तो कायदे में जो है जैसे लाइन लगा करके मतदान वगैरह किया जाएगा। जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको हम लोगों ने ले आने और ले जाने की व्यवस्था की है
0: जी।
1: और जो बुजुर्ग मतदाता हैं, तो ये भी युवा मतदाताओं का कर्तव्य है कि वो जो है लाइन में उनको आगे बढ़ाएं। एक तरह से एक नागरिक का कर्तव्य भी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें और उनको सुविधा प्रदान करें
0: जी। हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो एक सवाल ले लेते हैं श्रोताओं का। हेलो,
2: नमस्कार मैम
0: जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार,
2: मैं रिसपाल गोदरा बीकानेर से बोल रहा हूँ
0: जी। अपना सवाल करें
2: मैम। सर से ये पूछना था, ये जो चुनाव होता है बहुत बढ़िया बात है, पर इसके अंदर ये जो वोट खरीदते हैं लोगों को पैसे देके इस तरह से करते हैं, तो फिर लोकतंत्र में एक प्रकार से वो साफ छवि से नहीं होता, सुना जाता।
1: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही गलत है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि जो है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाए। वैसे तो हम लोगों ने समय जो है बहुत कम दिया है हर गतिविधि के लिए, तो एक तो संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत कम समय है तो लोगों को मैनेज और मैनिपुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। नंबर दो ये है कि जहां राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है वहां पर भी ऐसी कोई संभावना नहीं होगी।

0: संभावना वही होती है जहां पर कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और उसके बाद जो है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको साधने की जब कवायद शुरू होती है तो उसमें इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की प्रवृत्तियां जो है वो प्रोत्साहित होती हैं। मेरा तो आम जनता से यही निवेदन है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो ईमानदार हों, निष्ठावान हों, कर्मठ हों और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हों, ऐसे लोगों को ही वो चुनाव में चुने जिनके भविष्य में बिकने की संभावना नहीं रहे। तो ये जो है आम जनता की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। निरंतर श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। हेलो हेलो
3: हेलो।
1: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
3: मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है और अम्बावाड़ी जयपुर में रहता हूँ।
1: हाँ जी हरिमोहन शर्मा जी, सवाल कीजिए।
3: मैडम जी, ये मेरा सवाल है कि मैंने वोट मेरी वाइफ के बच्चे के बच्चे की बहू का वोट दूसरे आई थी शादी हो गई उसका तो वोटर आ गया वोट कार्ड, और हमारा वोट कार्ड प्रिंटिंग में दिखा रहा है पिछले 4 महीने से
1: जी।
0: देखिए ऐसा है कि जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए और उसके बाद आप जो है आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका 11 तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है तो उनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं।
1: हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
2: मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, मैं दीदवाड़ जिले से बोल रहा हूँ।
1: जी मोहम्मद सिकंदर जी, सवाल कीजिए।
2: ये सर से मेरा ये सवाल है कि मैं विकलांग हूँ
1: जी,
2: और जब वोट देने के लिए जाता हूँ तो वहाँ जो अधिकारी होते हैं वो वोट खुद देते हैं, तो उसमें मैं वोट क्यों नहीं दे सकता या मेरा गार्जियन क्यों नहीं दे सकता, और मैं जिद करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए
1: जी,
2: इसका कोई उपाय बताइए सर।
0: क्या है ये?
1: विकलांग है, दिव्यांग है।
0: हाँ हाँ जी। नहीं, इस बार हम लोगों ने जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको ले आने और ले जाने के लिए व्यवस्था की है, इसका बाकायदा सर्वेक्षण कराया हुआ है और वहाँ पर व्हील चेयर वगैरह मौजूद रहेगी केंद्र पर, और जो आपके मदद के लिए जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो उपलब्ध रहेंगे तो वो आराम से ले जा करके आपको मतदान करवा देंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
1: एक और कॉल। हेलो हेलो हेलो। चलिए, श्रोता के फोन कॉल्स जो हैं लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक श्रोता जुड़े रहते हैं तो दूसरे श्रोता फोन करते रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन। सर, बात हो रही है इसी बात की कि वोट सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है। अभी जो हमारे साथ एक जुड़े थे हमारे श्रोता, वो भी उनके मन में भी यही सवाल था। तो मतदाता के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है या नहीं, फर्जी मतदान या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान जैसी स्थिति को रोकने के लिए आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं।
0: देखिए, दो बातें हैं, एक तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
1: जी,
0: दूसरा यह है कि जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में कम से कम एक डॉक्यूमेंट जो है उस आदमी के पास होना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो सके
1: जी,
0: और तीसरा जो है वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं या उनके एजेंट हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं
1: जी।
0: तो अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो स्थानीय कर्मचारियों की मदद से जो है वो उसको उस ऑब्जेक्शन को दूर किया जा सकता है
1: जी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतदान करना बेहद जरूरी होता है, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से क्या विशेष जागरूकता अभियान या प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा था और अब कितना बढ़ने का आसार है?
0: देखिए ऐसा है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनके मुकाबले स्थानीय निकायों का जो मतदान प्रतिशत है वो कम ही रहता है
1: जी,
0: और ये पहली बार है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सारे जो स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव एक साथ हो रहा है
1: जी,
0: इसके बाद सारी पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव एक साथ होगा
1: जी।
0: तो हम लोगों ने जो है मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है और जो हमारे स्वीप के प्रभारी होते हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होते हैं
1: जी,
0: फिर डिस्ट्रिक्ट स्वीप कोऑर्डिनेटर होते हैं वो डिग्री कॉलेज के व्याख्याता वगैरह होते हैं
1: जी,
0: और हर

0: स्कूल कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया हुआ है, जिसमें जो बच्चे हैं वो कैंपस एम्बेसडर होते हैं
1: जी।
0: तो इनके माध्यम से पूरे राजस्थान में रंगोली, मतदाता जागरूकता रैली, वृक्षारोपण अभियान, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जो है आयोजित किए जा रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को उनके मत की कीमत समझाई जाए कि उनके एक मत का क्या महत्व है, उसका लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या योगदान हो सकता है
1: जी,
0: और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें हम युवा पीढ़ी का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, राजनीतिक दलों का, सबका पूरा सहयोग ले रहे हैं
1: जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माइक पर मुखिया, और श्रोता अगर जुड़ना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो स्टूडियो में जो हमारे स्टूडियो नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं 01412200, 01412200700, 01412200800 और 01412366477, ये हमारे फोन लाइन्स हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं और सवालों का सिलसिला उन्हीं से प्रारंभ करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते
0: जी, अपना सवाल करें और नाम बताएं पहले।
1: हाँ, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, खजाने वाले रास्ते से।
0: जी गुड्डू जी, सवाल करें।
1: मेरा सर से सवाल ये है कि जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं, इन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सिंबल दिया जाता है, तो उसका उपयोग मतलब चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? और मतलब मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने घर ले जाए या जमा होता है, इस तरह की बात है।
2: नहीं, वो तो जो अपने

0: चुनाव के लिए उनको अथराइजेशन लेटर वगैरह है, वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, तो वो जमा करने का भी कोई प्रावधान नहीं, वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकते।
1: अगला सवाल। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
2: मैं नागौर से बोल रहा हूँ मैडम
1: जी। अपना नाम बताएं। हेलो,
2: नाम अभी कौन है मैडम?
1: हाँ जी, सवाल कीजिए।
2: मैडम मेरा सवाल ये है कि, हेलो,
1: हाँ जी सवाल कीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल करें।
3: मेरा नाम प्रमोद कुमार है
1: जी। प्रमोद जी, सवाल कीजिए।
3: नगर से बोल रहा हूँ
1: जी। अपना सवाल,
3: मेरा सवाल है कि म्युनिसिपलिटी में के चुनाव में 18 साल की जो उम्र है वो विधानसभा लोकसभा में भी है क्या?
0: नहीं, विधानसभा लोकसभा में तो जो 25 साल की उम्र के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें जो है वो 21 साल की उम्र के जो मतदाता हैं वो भी प्रत्याशी बन सकते हैं।
1: हेलो। हेलो।
4: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
4: संदीप जैन बोल रहा हूँ जयपुर से
1: जी।
4: मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे नगर निगम के चुनाव है जयपुर में, तो उसके अंदर हमने अपना नाम अभी रिसेंटली लिखवाया था और लिस्ट में आ भी गया है, परंतु नाम के अंदर त्रुटियां हैं, हमारा नाम गलत लिखा गया है या पिताजी का नाम गलत लिखा गया है, इस तरह की कुछ त्रुटियां हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें वोट देने से वंचित तो नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इस त्रुटियों को कैसे ठीक करवा सकते हैं।
0: देखिए, अभी तो जो है जो मतदाता सूची है वो फाइनल हो चुकी है, उसमें शुद्धिकरण का जो प्रावधान था वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने की अंतिम तिथि तक था, अब जब ये हो गया है क्या नाम फाइनली ये जो है पब्लिश हो चुकी है, तो अभी तो शुद्धिकरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर मामूली त्रुटियां हैं तो उसके आधार पर आपको वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है
1: जी। और आगे के लिए अगर ठीक करना हो,
0: आगे के लिए ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर वो करवा सकते हैं
1: जी। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
5: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
5: मैं शेफाली जांगिर बोल रही हूँ जयपुर ग्रामीण से
1: जी। शेफाली जी, अपना सवाल करें।
5: मैं से पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक सीट पे एक से अधिक कितने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि 100 से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें पर्चा भरा है
1: जी,
5: तो इससे ऐसा समस्या आती है कि वोट बिखराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि ऐसे किसी किसी जगह से कि जो अपनी सेम कास्ट का होता है लोग उसी को वोट देते हैं, तो एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तो इसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है
1: जी?
0: नहीं, इसमें तो क्या है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का और वोट मतलब चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता का प्रत्याशी के रूप में वो अधिकार प्राप्त है, उसको तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, और लेकिन जो आम जनता है वो अगर अपने विवेकपूर्वक अपने उसका इस्तेमाल करे मताधिकार का, तो निश्चित रूप से जिनको बहुत कम वोट मिलेंगे तो वो भविष्य में जो है वो प्रत्याशी बनने से हतोत्साहित होंगे और चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल नहीं हो पाएगी।
1: हेलो,
6: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार,
6: केबी शर्मा निवेदन कर रहा हूँ जयपुर
1: जी। केबी शर्मा जी, अपना सवाल कीजिए।
6: सर मेरे दो प्रश्न है कि एक तो ये कि आप तो विभिन्न जगहों पे जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे रहे हुए हैं, तो राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक स्थिति, कई मिट्टी के टीले भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, तो वहाँ कम से कम दूरी जो मतदाता है उनका एक निश्चित अनुपात चुनाव आयोग की तरफ से कुछ रखा जाता है कि ज्यादा उनको श्रम ना लगाना पड़े अपना मतदान करने के लिए? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि सर आदर्श आचार संहिता का जो एक उल्लेख हमारे निर्वाचन विभाग द्वारा और देश में किया गया है, तो इसकी 100% अक्षरतः कैसे पालन जिला मजिस्ट्रेट या ईआरओस के माध्यम से कराई जा सकती है, इसका थोड़ा सा मैं बस आपसे जानकारी।

0: 11।
1: देखिए ऐसा है कि जो आमतौर पर मतदान केंद्र होते हैं वो 1200 की मतदाता संख्या पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और अगर जो है कहीं पर 1400 से ज़्यादा मतदाता हो जाते हैं तो हम लोग वहाँ एक सहायक मतदान केंद्र की भी व्यवस्था करते हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस चीज़ का पूरा जो है रखा गया है ध्यान की जो है कम से कम दूरी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो आपने आचार संहिता की पालना के लिए कहा, तो इसमें हम लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, जिला कलेक्टर्स ने भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, उनको आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया है। मुख्य रूप से यह है कि इस दौरान जो है जो सरकारी संसाधन हैं उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और जो नई कोई घोषणाएं नहीं की जाएगी, नए कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा मिले। और इस सारी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिला पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अगर कहीं भी कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएंगे, और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर राज्य चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे।
2: जी, अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
3: नमस्ते मैडम, नागौर से बोल रहा हूँ अभी। कौन?
2: हाँ जी बोले, अपना सवाल कीजिए।
3: मैडम मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मतदाता को चुनाव संबंधी कोई शिकायत या कोई समस्या है तो वह कहाँ और किस प्रकार शिकायत कर सकता है?
2: जी
1: देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मतदान केंद्र के बाहर एक मतदाता सहायता डेस्क, वोटर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिस पर जो है बूथ लेवल ऑफिसर भी रहेंगे और उनके साथ स्थानीय कर्मचारी रहेंगे, तो पहला तो वहाँ पर है। और उसके बाद जो है जो मतदान केंद्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ भी अगर समाधान नहीं हो तो जो उस क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जिला स्तर का जो कंट्रोल रूम है उसे में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो,
4: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए सर।
4: मैडम मेरा नाम जवाहरलाल तंवर है।
2: जी भंवरलाल जी, सवाल कीजिए।
4: मैडम मेरा सवाल यह है कि मैं दिव्यांग हूँ, ब्लाइंड हूँ मैडम। तो जो पहले एमएलए के चुनाव होते थे उस समय तो सिस्टम ये था कि घर पे मतदान कराया गया मेरा, और इस बार ये घर का मतदान इन्होंने बंद कर दिया।
2: जी
4: ऐसा क्यों मैडम?
1: देखिए ऐसा है कि स्थानीय चुनाव में कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ये चालू हुआ है, और संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी तो हम भविष्य में इस तरह की प्रणाली हम लोग भी जो है वो अपनाएंगे। और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने घर से ले आने और ले जाने की व्यवस्था करेंगे, आगे जब कभी चुनाव होंगे तो उसमें आपके सुझाव का भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
2: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो हेलो,
5: हाँ जी मैडम नमस्ते।
2: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
5: मैं सीताराम शर्मा झुंझुनू से बोल रहा हूँ मैडम।
2: जी सीताराम जी, अपना सवाल कीजिए।
5: मेरा सवाल ये मैडम, जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है उसके नाम में और डीओबी में अंतर है, मतलब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड आदि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो नाम में और डीओबी में डिफरेंस है, उसको सही कैसे करवाएं, मतलब वोटर आईडी?
2: जी
1: देखिए, जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उस समय जो है वो सही समय था जब अपन इस तरह की त्रुटियों को दुरुस्त करा सकते थे, और अभी पिछले जो है जब हमारी मतदाता सूची फाइनली जो है पब्लिश हुई तो उस समय भी अपन ये करा सकते थे, अब वो समय बीत चुका है। हालांकि इसके आधार पर जो है हमारे निर्देश हैं कि छोटी मोटी त्रुटियों के आधार पर जो है वो आदमी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए, और इस चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जो है आप अपने नाम का शुद्धिकरण या जो भी सूचनाएं हैं उनका शुद्धिकरण करवा सकते हैं।
2: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
6: हेलो, नमस्कार मैम, मैं आलोक सक्सेना बोल रहा हूँ।
2: जी आलोक जी,
6: दृष्टिबाधित मतदाता, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे बीएलओ चेंज हो गए हैं, हमारे कौन से बीएलओ है इसकी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं?
1: ये अपने जो क्षेत्र के रिटर्निंग आप

0: ऑफिसर हैं नगरीय निकाय के, उनके कार्यालय से भी ले सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: जी मैम, मेरा नाम नुमान है।
1: हाँ जी नुमान, अपना सवाल करें।
2: जी मैम, मेरा सवाल ऐसे ही है कि चुनाव को सुरक्षित तरीके से कैसे कराया जा सकता है, जैसे कि हमने सुना है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो इसके लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है?
1: जी,
0: इसमें ऐसा है कि जो ईवीएम का रेंडमाइजेशन होता है उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं और उनकी उपस्थिति में ही रेंडमाइजेशन होता है, नंबर वन। नंबर टू, जहां स्ट्रांग रूम वगैरह बनता है तो वो भी पब्लिक की जानकारी में होता है, वहां पर कोई भी आवागमन होता है तो रजिस्टर में बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है और केवल अथराइज्ड जो पर्सनस हैं वही आवागमन उसमें कर सकते हैं। तो मुझे और पूरे भारत में जो है वो इसके ईवीएम के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उसको लेकर के जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो केंद्रीय चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है उसको इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि जो पुख्ता जानकारी कि इसको जो है हैक किया गया हो कभी या इसमें हैक किए जाने की संभावना हो।
1: जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, एक सवाल हम भी आपसे करना चाहेंगे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन से लेकर के चुनाव प्रचार और चुनाव खर्च तक के नियम होते हैं, उम्मीदवारों को ऐसी कौन कौन सी सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है?
0: देखिए, इसमें हम लोगों ने जो नगर पालिका चुनाव है उसके लिए वार्ड मेंबर के लिए रखा है कि 1.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकते हैं, नगर परिषद में 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं सदस्य पद के लिए, और नगर निगम के पार्षद पद के लिए जो है वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो उनको जो भी पोस्टर बैनर या प्रचार सामग्री वगैरह करनी है वो इस सीमा के अंतर्गत करनी चाहिए। नगर पालिका सदस्य जो है वो प्रचार के लिए 1 वाहन का उपयोग कर सकते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो 2 वाहन का और नगर निगम के जो सदस्य हैं वो 3 वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो इनको जो है पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो उस सीमा के अंतर्गत ही अपना व्यय एक तौर करें और चुनाव समाप्ति के 15 दिन के अंदर वो रिटर्निंग ऑफिसर को अपना जो है वो खर्चा दे दें कि हमारा इतना व्यय हुआ है, अन्यथा जो है वो भविष्य में उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
1: जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर से लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी के साथ में।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, और लगातार श्रोताओं के फोन आ रहे हैं, सवाल लेते हैं सर उनके। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, जी अपना नाम बताएं।
1: सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ, कुंदन कटारिया।
0: जी कुंदन जी, अपना सवाल करें।
1: मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गई है, ये वो खराब हो गई है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी
2: देखिए, ऐसा है कि जो ईवीएम है वो उसका हैक होने या उसके मैनिपुलेट होने की बहुत कम संभावना रहती है या बिल्कुल नगण्य संभावना रहती है। अभी तक की तो स्थिति यही है, कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं कर पाया कि इसको हैक कर सकते हैं या अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो ये खराब होती हैं जब प्रोसेस के दौरान, तो हम लोगों ने 15-20% जो है वो हर जगह व्यवस्था कर रखी है, जो तुरंत उनको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। हमारे हर जिले में जो है इंजीनियर्स, जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स भी रहते हैं, जो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान कर देते हैं।
0: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
3: जी, आदरणीय उद्घोषण महोदय, राधे राधे।
0: जी राधे राधे, अपना सवाल करें और अपना नाम बताएं उसके पहले।
3: जी मेरा नाम केसी कमल है, कैलाश चंद्र कमल।
0: जी
3: मैं विद्याधरनगर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, अपना सवाल
3: कीजिए। आंखों से थोड़ा फिजिकली वो नहीं हूँ, मेरा वोटिंग आता है देवी नगर में, तो क्या मेरे पास आधा वो कार्ड सब है मेरे पास फैसिलिटी, तो क्या यहाँ कोई विद्याधरनगर में ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ वोटिंग कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है।
2: जो अपने दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है उनको घर से लाने ले जाने की, अभी उनका सर्वे किया गया है, तो जो अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको अपना नाम नंबर पता वगैरह नोट करा दीजिए, तो वहां से हम लोग ये व्यवस्था कर देंगे।
0: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल कीजिए।
4: हाँ मैडम, पंकज सोनी बोल रहा हूँ।
0: जी पंकज जी,
4: अभी भाई ईवीएम हैक नहीं हो सकती और उसके अंदर भाई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इसको रिपोर्ट पेश कौन करेगा? तो
0: जी
2: तो ये तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग हैं, उन्होंने समय समय पर जब भी इस तरह के आक्षेप आए हैं तो उसके संबंध में जो है वो थर्ड पार्टी से इसका इवैल्यूएशन कराया है, और वो जो सारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल एरर फ्री है, त्रुटि मुक्त है, और ये कई बार सिद्ध हो चुका है।
0: हेलो
5: सर को नमस्कार। बहन जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, अपना सवाल करें।
5: जांगड़ बोल रहा हूँ, मुरलीपुरा जयपुर से।
0: जी सवाल कीजिए।
5: सर से दो तीन जिज्ञासा थी, मैं ये पूछ रहा था। एक तो सर, जैसे मान लीजिए हम गांव के रहने वाले हैं, मैं कोटपुली बैरोड जिले का रहने वाला हूँ और मैं दिव्यांग हूँ और यहाँ मतलब पिछले 15 साल से रह रहा हूँ अपने जयपुर में भाई के पास।
0: जी।
5: और यहाँ के मेरे पास में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इच्छा करती है वोट करने की यहाँ पे, अब गांव गया नहीं जाता कि मैं ब्लाइंड हूँ।
0: जी।
5: तो ये पूछ रहा था यहाँ किसी वजह से वोटिंग कर सकता हूँ? और दूसरा, जैसे SIR में कई लोगों के नाम कट चुके हैं, बहुत लोगों के, और वो बहुत परेशान है, तो उनको दोबारा से क्या सुविधा मिल सकती है कुछ?
2: देखिए, ऐसा है कि जहां मतदाता सूची में आपका नाम है वहीं पर आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल से यहां पर रह रहे हैं तो यही कहा जाता है कि जहां ऑर्डिनरली आदमी रहता है, जहां का ऑर्डिनरली वो रेजिडेंट है, वहीं पर उसको अपना मतदाता कार्ड बनाना चाहिए और मतदान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अपने और क्या प्रश्न था इनका,
0: अगर नाम कट गया है तो
2: हाँ, अपडेट तो करने जो SIR है उसमें जो है नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं लोगों को, वो केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्रवाई है, उसका राज्य चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको नोटिस वगैरह देते हैं और पर्याप्त सबूत वगैरह पेश करने पर वो लोग जो है मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई करते हैं।
0: जी एक सवाल और करना चाहेंगे सर, समय बहुत कम रह गया और बहुत जरूरी सवाल है। चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ते जा रहा है, मतदाता सुविधा और चुनाव प्रबंधन और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह की डिजिटल तकनीक और सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है?
2: देखिए, अब एक तो मैंने बताया कि जो राज्य चुनाव आयोग का सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह वो क्रिएट किया गया है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सारे जो वो हैं।
0: जी
2: तो एक तो उसके ऊपर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं, फिर जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पर वर्बली भी जो है वो अपने जो भी शिकायत है उसको कर सकते हैं, जिला कंट्रोल रूम में भी कर सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह जो हैं तो उनके कार्यालय में भी इसको कर सकते हैं, और लगभग सारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन लोगों का भी जो है ये फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह ये मतलब खुला भी है और सक्रिय भी है, तो वहाँ उनका भी उपयोग करके जो है अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
0: अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से राजस्थान के लाखों श्रोताओं के लिए आपका संदेश, मतदान के दिन हर मतदाता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किस तरह निष्पक्ष, निर्भीक और जागरूक होकर मतदान करना चाहिए, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
2: देखिए, प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं और पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं, और यहाँ पर जितने जो है निष्ठावान, समझदार, सुसंस्कृत और विजनरी और जो स्थानीय समस्याओं से अवगत और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं
0: जी।
2: अगर वो चुन करके इन निकायों में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक जनता को सही प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, उनकी समस्याओं का सही समाधान होगा
0: जी,
2: और उनको जो है एक तरह से अपने चयन से संतुष्टि भी प्राप्त होगी
0: जी।
2: तो मेरा आम जनता से यही निवेदन है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है और चरित्र कैसा है, इन तीनों चीजों को जो है सोच समझ करके ही अपने मत का, अपने पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करते हुए और बिना किसी प्रलोभन और बिना किसी दबाव में आए हुए, बिना किसी भय के अपना मतदान करें ताकि जो स्थानीय लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके
0: जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतने जो सवाल थे उनका जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, थैंक यू।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम माइक पर मुखिया। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला प्रकाश बाबू, रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी और मानवेंद्र प्रजापति का। प्रस्तुतीकरण सहयोग रहा निरंजन कुमार शर्मा का और इसके प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर गौरव यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती जयपुर केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हमने विविध भारती के जयपुर केंद्र से रिले किया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगर
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए

अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
3: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: आकाशवाणी अलवर का ये सरीज का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है?
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है,
1: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के

0: नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति, आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसएलवी F-17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। गौरतलब है कि इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रदेश में नगर निकाय आम चुनाव में कल नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रक्रिया के तहत आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षण कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का पर्यवेक्षण 7 से 14 सितंबर तक और दूसरे चरण का पर्यवेक्षण 21 से 22 सितंबर तक होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर आज प्रदेश भर में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। कई स्थानों पर कृष्ण और राधा की बाल झांकियां निकाली जा रही हैं। घरों में भी झांकी सजाकर श्रद्धालु भजन और सत्संग कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जा रही हैं। श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं, साथ ही यातायात के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेशों से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी पर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होने की कामना की। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन आत्मा के उजास का पर्व है। श्री कृष्ण के कर्मयोग से शिक्षा लेते हुए हमें हमारे देश और प्रदेश की तरक्की के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से कल राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों ने मुलाकात की। NSS के राज्य दलनायक डॉक्टर विवेक कुमार की अगुवाई में लोक भवन में ये भेंट की गई। इस दौरान श्री बागड़े ने विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रथम की सोच से काम करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने NSS की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम और टेक्सटाइल कमेटी ने रिसाइकल

अपसाइकल किए गए टेक्सटाइल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल सरकारी खरीद के जरिए प्री और पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट स्क्रैप और पुराने कपड़ों से बने रिसाइकल और अपसाइकल किए उत्पादों को बढ़ावा देगी, जिससे सर्कुलर टेक्सटाइल इकोनॉमी में कंपनियों के लिए बाजार के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह एमओयू वेस्ट टू वैल्यू टू मार्केट इकोसिस्टम बनाएगा, जिससे टेक्सटाइल वेस्ट स्क्रैप और पुराने कपड़ों को अच्छी क्वालिटी वाले वैल्यू एडेड उत्पादों में बदला जा सकेगा। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। कल कई जिलों में हुई तेज बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने 24 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। विभाग के अनुसार भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के अनेक इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बरसात का यह दौर रविवार तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है, तो करते हैं शुरुआत। क्या कहते हैं आप
1: प्रिये?
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

जी, तो श्री गणेश तो हो गया है ना इस कार्यक्रम का, और हम सफर पर निकल भी पड़े हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी, लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें, और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है। आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए, लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है। और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया, वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है। और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं, वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्द शैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद, लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है, वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा, आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है। आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है, यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है, और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है, और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ, और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं, सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था, और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार हैं नीरज।

हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्ज्वल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे ये कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, परिवार है। धरती केवल मिट्टी नहीं, माँ है। आकाश केवल विस्तार नहीं, पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है, और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है, और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छल के, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव

उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं, प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपाल दास नीरज की हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास, जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम

हमारे श्रोता, कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है, आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम छुपी हो कहाँ, हम आपकी आवाज़ सुनने को तड़प रहे हैं यहाँ। एक श्रोता लिखते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया, बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं, बस इतना ही, ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं, क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं, क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है। किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए, आप जैसा समझे सर, आंखों पर आपकी हर बात, आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी तरफ से क्या, आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए, प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्धबाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरा से पूर्व में 218, नवलपरा से पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और

0: 38 लोगों की मृत्यु हुई है।
1: काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में

0: 38 लोगों की मृत्यु हुई है।
1: काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
3: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग

0: अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहेब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजी, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोसले। बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सीआईडी से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन ओपी नैयर की है।

इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: साथियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे है। आपके जीवन में अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है
0: जी,
1: और मेरी ननद, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बड़ौदा से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है। रसोई का और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तेज पत्ते में से, पिस्ता में से।
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते है ना, गुंदा अथाना, वो भी ऐसा वाला त्रोफान लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ऐसा
0: जी,
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर करते है।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: ઓરે ગોપીઓના ઘરમાં જઈને લીલાયો કરે શ્યામ, આવીને મારી માથુકી ખોરે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करते रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है.
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हम, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में
0: जी,
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है। चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जो गन्ने का रस जो निकलता है ना तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है। तो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा
0: जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी छोटी बहू फिल्म का गाना है कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।
0: जी रुचि जी, नमस्ते। बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई। तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवा फिल्म का पिया तू अब तो आ जा,
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
1: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
1: सड़क
0: बहुत
1: भी जो याद आ गया वो गा दिया मैडम, कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं, बहुत सुंदर आपकी
1: जी
0: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
1: जी
0: आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो
1: जी जी
0: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, यानी कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं, पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है
0: और आप रियाज के
1: ऐसा।
0: माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी जी जी
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को
1: हाँ
0: लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसा मुझे लगता है।
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबा रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबा रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबा रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स है कि बीए के बाद में क्या करना चाहती है?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती है?
1: जी मैम।
0: जी तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हालचाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, बारह ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के खंचारू बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइडसम
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल न करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।

स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती। चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चिढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाड़ली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

नेहा अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही है वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ, नहा धो,

उर्मिला, एक चम्मच। नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते, और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती है।

से अपना।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती।

इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता। इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी।

पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा।

उसने तय कर लिया। अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा, और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देव इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि

उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

माखन चुरा कर जिसने खाया, बंसी बजा कर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्म की जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया। श्रोताओं, आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी सखी शिखा शर्मा, स्वागत करती हूं महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज का दिन और आज का विषय दोनों ही बहुत खास है। आज हमारी चर्चा का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एक ऐसा पर्व जिसमें भक्ति है, उत्साह है, प्रेम है और साथ ही जीवन को सही दिशा देने वाली सीख भी है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव देश विदेश में मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ था। उस समय अत्याचारी कंस का शासन था, चारों ओर भय और अत्याचार का वातावरण था। लेकिन उसी अंधकार के बीच भगवान विष्णु जी ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लेकर उस अत्याचारी कंस का संहार किया था। कहते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश का जन्म अवश्य होता है। मनु कृष्ण का बाल रूप तो हर किसी के मन को मोह लेता है। माखन चुराते काना, गोपियों को छेड़ते काना और माता यशोदा की डांट से बचते नटखट काना, काना की इन बाल लीलाओं को सुनने और देखने का अपना अलग ही आनंद होता है। लेकिन श्री कृष्ण का व्यक्तित्व केवल बाल लीलाओं तक ही सीमित नहीं है। वे एक कुशल मित्र, महान कूटनीतिज्ञ, मार्गदर्शक, योद्धा और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व भी हैं। श्रोताओं, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का मार्ग समझाया। भगवद गीता में दिया गया उनका संदेश आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के समय में हम अक्सर अपने काम का परिणाम तुरंत चाहते हैं। मेहनत करते ही सफलता चाहिए, पढ़ाई करते ही अच्छे अंक चाहिए, प्रयास करते ही प्रशंसा चाहिए। यदि हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आता तो हम हार मान जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का कर्म का संदेश हमें धैर्य रखना सिखाता है। श्रोताओं, माता यशोदा के साथ श्री कृष्ण का संबंध माँ और बच्चे के प्रेम का सुंदर उदाहरण है। यशोदा मैया के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, वे तो उनके लाडले कन्हैया थे, जिन्हें वो प्यार से तैयार करती, माखन खिलाती और कभी कभी गोपियों के डांट से भी बचाती थी, कभी उन्हें पेड़ से बांध देती थी। न जाने कितनी सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा के साथ की। उनकी बाल लीलाओं से जन्माष्टमी पर हम यह संकल्प लें कि अपने बच्चों और परिवार के साथ समय अवश्य बिताएंगे और बच्चों को हमारी संस्कृति तथा परंपरा से जोड़ेंगे। श्रोताओं, सच्ची मित्रता में धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा का महत्व नहीं होता। मित्रता का आधार होता है विश्वास और अपनापन। जैसे भगवान कृष्ण को जब पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर ही दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगाया। सुदामा के लाए हुए थोड़े से चावल के बदले उन्हें एक भव्य और आलिशान महल दिया, सुदामा जी के दुखों को दूर किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता जात पात, अमीर गरीब के भेद से परे होती है। श्रोताओं, श्री कृष्ण के जीवन में अनेक परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, लेकिन इस समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि

0: अहज धैर्य मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए तो उसका हल जरूर निकलता है। हार मानने के बजाय अपने ऊपर किया गया विश्वास हमें तनाव से बचाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें संतुलन सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि जीवन में खुशी भी आएगी और दुख भी, सफलता भी मिलेगी और असफलता भी, लेकिन हमें अपने मन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अन्याय के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। श्रोता, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर घर और मंदिरों में श्री कृष्ण जी की झांकियां सजाई जाती है। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में सजाया जाता है। कई स्थानों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होता, सामूहिक प्रयास और एकता का संदेश देना इस आयोजन का उद्देश्य होता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मिलजुल कर रहें, तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपना व्रत खोलते हैं। मध्य रात्रि में भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर, नए वस्त्र धारण कराकर माखन मिश्री खीर मिठाई का भोग लगाया जाता है। श्रोताओं, इस जन्माष्टमी हम केवल व्रत पूजा और उत्सव तक ही सीमित ना रहें, बल्कि श्री कृष्ण के जीवन से कुछ अच्छी बातें सीखें, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रेम करें, भेदभाव ना करें, कर्म करें लेकिन अहंकार ना करें। सफलता मिले तो विनम्र रहें, असफलता मिले तो निराश ना रहें। मित्रता करें तो सच्चाई से करें और अन्याय के सामने हमेशा सही का साथ दें। इस जन्माष्टमी अपने घर में कान्हा की झांकी सजाने के साथ साथ अपने मन में भी प्रेम, करुणा और सद्भाव की ज्योति जलाएं। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ करवाते हैं आपका मनोरंजन श्री कृष्ण के गीत से, तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

श्रोताओं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर सदस्य सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनती हैं। श्रोताओं, हमारी जानकारी का विषय है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को, जैसे गरीब बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित कमजोर समूहों को वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र बढ़ने के साथ कमाने की क्षमता कम हो गई है, एक महिला जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया और अब परिवार की जिम्मेदारी उसके सामने है, एक दिव्यांग व्यक्ति जिसके लिए रोजगार प्राप्त करना कठिन हो सकता है, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आर्थिक सहायता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। श्रोताओं, NSAP कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में बहुत सी योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य पात्र वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देना है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जो परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अन्नपूर्णा योजना, यह उन पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्यान्न सहायता से जुड़ी योजना है जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होने के बावजूद पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। श्रोताओं, इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, बैंक पासबुक, विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत आवश्यक है।

केंद्र सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर मांगी गई सभी जानकारियां, फोटो और दस्तावेजों को अपलोड कर आप अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, पालिका या परिषद कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन सफल होने पर पेंशन को मंजूरी दे दी जाती है। लाभार्थियों की राशि सीधे उनके बैंक या डाकघर खाते में भेज दी जाती है। श्रोताओं, NSAP कार्यक्रम की आप जानकारी प्राप्त करें और जागरूक बने तथा जरूरतमंद लोगों को जानकारी दें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। मनो, अब हम देते हैं हमारी जानकारी को विराम और करवाते हैं एक गीत से मनोरंजन। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, त्योहारों की खूबसूरती केवल पूजा पाठ और सजावट से नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी परंपराओं, खुशबू और स्वाद से भी होती है। जब बात हो कृष्ण जन्माष्टमी की, तो मन में सबसे पहले कान्हा की बाल लीलाएं, उनकी मुरली, माखन मिश्री और तरह तरह के भोग की याद आ जाती है। विविधा में आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस भोग की, जो कृष्ण और उनके सखाओं को सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसको खाने की वजह से कान्हा जी ने गोपियों और यशोदा मैया से बहुत डांट खाई। वह है माखन मिश्री। ताजा सफेद मक्खन में छोटे छोटे मिश्री के टुकड़े और

होने की वजह से कान्हा जी ने गोपियों और यशोदा मैया से बहुत डांट खाई। वह है माखन मिश्री। ताजा सफेद मक्खन में छोटे छोटे मिश्री के टुकड़े और मेवे मिलाकर तैयार किया गया माखन मिश्री भोग भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। मानो जन्माष्टमी के सबसे लोकप्रिय प्रसादों में से एक है धनिया की पंजीरी। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म करके मखानों को हल्का कुरकुरा भून लेंगे और ठंडा होने पर कूट लेंगे। अब उसी कढ़ाई में धनिया पाउडर को धीमी आंच पर हल्का भूनेंगे, फिर इसमें मखाने मेवे इलायची डाल देंगे, ठंडा होने पर बूरा मिलाएंगे। बस तैयार है स्वादिष्ट धनिया पंजीरी, जिसे भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ता रखकर भोग में अर्पित किया जाता है। जन्माष्टमी पर दूध घी शहद शक्कर दही 5 अमृतों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है। पंचामृत का सेवन कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। जन्माष्टमी पर नारियल पाक का भी भोग लगाया जा सकता है। नारियल को कद्दूकस करके एक कढ़ाई में घी डालकर कद्दूकस किए हुए नारियल और खसखस को डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भून ले। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लें। एक कढ़ाई में मावा और चीनी को मध्यम आंच पर भूनें, जब तक चीनी अच्छे से गलकर मावा के साथ पक ना जाए। अब गैस बंद कर दें और इसमें भुने नारियल खसखस इलायची पाउडर को अच्छे से मिलाएं। फिर एक थाली पर घी लगाकर इस मिश्रण को फैला दें। जब नारियल पाक सूख जाए तो इसे बर्फी के आकार में काट लें। बहनों, जन्माष्टमी के व्रत पर कूटू के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। कूटू के आटे में काली मिर्च, सेंधा नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और उबले आलू डालें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लें। कढ़ाई में घी डालें और घोल के पकोड़े बनाकर तल लें। पकोड़ों को धनिया चटनी या रायते के साथ खाया जा सकता है। राजगिरी के आटे में उबले हुए आलू मैश करें, उसमें सेंधा नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और काली मिर्च पाउडर डालकर आटा गूंथ लें। आलू की नमी के कारण पानी की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है। अब आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। थोड़ी देर बाद आटे की लोइयां बनाएं और हल्के हाथों से बेलें। कढ़ाई में तेल या घी को गर्म करें और मध्यम आंच पर पूरी को तल लें। राजगिरी की पूरी को आलू की फलाहारी सब्जी के साथ सर्व करें। इसके अलावा साबुदाना खीर, मखाना खीर, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, सामक के चावल की खीर, दही से तैयार की गई मखाने की फलाहारी सब्जी, राजगिरी, सिंघाड़े, आलू या लौकी से बनाया गया हलवा भी आप जन्माष्टमी पर बनाकर अपने कान्हा जी को भोग लगा सकती हैं। श्रोताओं, इन पकवानों में स्वाद है, परंपरा है और सबसे बढ़कर है भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा। जब भक्त पूरे दिन उपवास रखकर रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक कर भोग अर्पित करते हैं तो वे भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बनो, भोग में हो श्रद्धा, प्रसाद में हो प्रेम और त्योहार में हो परिवार का साथ, तभी जन्माष्टमी की खुशियां बनती हैं खास। बनो, जाते जाते आपका करवाते हैं एक और गीत से मनोरंजन, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: अभी आप महिला जगत का कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

किसी की बात से असहमत होना गलत नहीं है, लेकिन असहमति को दुश्मनी बना देना जरूर गलत। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त भारती। हमारी जिंदगी में हर इंसान की अपनी सोच है, अपना नजरिया है, अपने अनुभव है, अपने तजुर्बा है। जरूरी नहीं कि जो बात हमें सही लगे वही बात सामने वाले को भी उतनी ही सही लगे जितनी की हमें लगती है, और यहीं से शुरू होता है समर्थन और विरोध। लेकिन सवाल ये है कि जब हम किसी की सोच से सहमत नहीं होते तो क्या हमें उस इंसान का ही विरोध करना शुरू कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि विचार अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति से विरोध वो बात सही नहीं है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि किसी मुद्दे पर दो लोगों की राय अलग हुई नहीं कि बातचीत से और विचारों से निकलकर व्यक्ति तक पहुंच जाती है। मतलब कि जो बात केवल विचारों तक रहनी चाहिए वो व्यक्ति तक चली जाती है। तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो? तुम्हारी सोच ही गलत है। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। और धीरे धीरे एक छोटी सी असहमति दोस्तों रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। जबकि होना ये चाहिए कि हम कहें कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन इस विषय पर मेरी राय थोड़ी अलग है। देखिए दोस्तों, असहमति का मतलब अपमान नहीं होता, विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होता, और किसी बात को न मानने का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं कि हम सामने वाले को ही नकार दें। कई बार हमें ये समझना होगा कि व्यक्ति और उसके विचार दोनों अलग अलग चीज है। किसी व्यक्ति की एक बात हमें पसंद नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान में कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे एक परिवार में जो साथ में रहते हैं लोग, उनकी पसंद सबकी अलग अलग हो सकती है। और जैसे दोस्ती की बात करें तो उसमें भी दो लोगों की सोच अलग हो सकती है। एक ऑफिस में काम करने वाले

लोगों की राय सबकी अलग अलग हो सकती है, फिर भी रिश्ते जलते हैं क्योंकि वहाँ हर बात पर जीतना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे को समझना जरूरी है। कभी कभी हम बहस में भी ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, मेरी बात मानो, नहीं ऐसा होता है। एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है जो हमारे रिश्तों को भी बनाए रखेगी, हमारे सम्मान को भी बनाए रखेगी, कि विचारों की टक्कर हो सकती है, विचारों की टक्कर हो सकती है, लेकिन दिलों में दीवार नहीं होनी चाहिए। कितना सही है ना दोस्तों, कि विचारों की टक्कर हो सकती है लेकिन दिलों में दीवार नहीं होनी चाहिए। सवालों पर बहस कर लीजिए पर इंसानों पर बहस नहीं होनी चाहिए।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

दोस्तों, आज एक फेस्टिवल की बात करेंगे जो शायद दुनिया के बाकी सारे फेस्टिवल से बिल्कुल अलग है। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहते हैं। कभी आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ हजारों लोग रेगिस्तान के बीच इकट्ठा होते हैं और अपनी बनाई हुई एक अलग दुनिया बसाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद उस दुनिया को पीछे छोड़कर चले जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्निंग मैन फेस्टिवल की, जो अमेरिका के नेवादा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में आयोजित होने वाला एक बेहद अनोखा उत्सव है। शायद आपने भी ये पहली बार सुना होगा। ये सिर्फ कोई म्यूजिक फेस्टिवल नहीं है, यहाँ पर लोग कला, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिटी के जरिए अपनी कल्पनाओं को हकीकत का रूप देते हैं। रेगिस्तान के बीच ऐसी विशाल आर्टिस्टिक क्रिएशन देखने को मिलती है जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे हजारों लोग रेगिस्तान के बीच कुछ दिनों के लिए एक पूरा शहर बसा देते हैं। इस फेस्टिवल की दोस्तों सबसे खास बात है इसकी फिलोसफी, लीव नो ट्रेस। यानी आप जहाँ आए हैं वहां से जब आप जाएंगे तो अपने पीछे कुछ भी ना छोड़ें। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इसका नाम है बर्निंग मैन। यहाँ एक और खूबसूरत विचार देखने को मिलता है कि जिंदगी सिर्फ चीजें जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ बनाने, बांटने और अनुभव करने का नाम भी है। हजारों लोग यहाँ आते हैं, एक शहर बनाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, नए अनुभव जीते हैं और फिर सब कुछ समेट कर चले जाते हैं। तभी तो इसका नाम बर्निंग मैन है, बर्निंग मैन फेस्टिवल है, क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान जब लास्ट में जब ये लोग फेस्टिवल को खत्म करके जाते हैं तो एक विशाल मानव की आकृति बनाई जाती है और अंत में उसका दहन कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। एक तरह से ये प्रतीकात्मक संकेत है कि हम जहाँ आए हैं और जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा कोई भी निशान ना हो, कोई भी हमारी चीजें ना रहे, हम कुछ भी साथ में लेकर ना जाएं, कुछ भी द्वेष है, जो मन में बुराई है, कुछ भी लेकर ना जाएं। ये एक तरह से पुरानी चीज़ों को छोड़कर जो नए अनुभव है उनकी ओर आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की ओर हमेशा आगे बढ़ते चलें। इसलिए मानव की आकृति बनाकर उसको लास्ट में दहन कर दिया जाता है। मतलब जो मिला उसे महसूस कीजिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भी एक त्यौहार की तरह है। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते।

दोस्तों अब चलते हैं हमारे विविधा के अगले सेगमेंट खेलों की ओर। जयपुर की पोलो विरासत में 3 सितंबर की रात इतिहास के पन्नों में जुड़ गई, या यूं कहें कि एक नया अध्याय और जुड़ गया। राजस्थान पोलो क्लब का मैदान पहली बार रात में फ्लड लाइट्स की रोशनी में जगमगा उठा और घोड़ों के टापों के बीच पोलो का रोमांच देर रात तक चलता रहा। सितंबर जयपुर पोलो सीजन 2026 में आरपीसी कप के सेमीफाइनल मुकाबले में नाइट पोलो के रूप में खेला गया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि जयपुर की सदियों पुरानी पोलो संस्कृति को एक नए अंदाज में देखने का अनुभव था। और इस ऐतिहासिक रात के नायक बने महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। टीम जयपुर की ओर से खेलते हुए उन्होंने अकेले 12 गोल दागकर अपनी टीम को आरपीसी के खिलाफ एक शानदार जीत दिलाई। घोड़ों के टाप और फ्लड लाइट्स से जगमग मैदान के बीच पद्मनाभ सिंह का हर गोल दर्शकों के उत्साह को बढ़ाता रहा। नाइट पोलो का यह पहला मुकाबला जयपुर के खेल के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया। राजस्थान पोलो क्लब अब दुनिया के चुनिंदा फ्लड लाइट पोलो मैदानों में शामिल हो गया है। पोलो से जयपुर का पुराना रिश्ता है, लेकिन रात की रोशनी में इस खेल का ये नया रूप पहली बार देखने को मिला है। यानी यूं कहें कि पहली बार जयपुर में रात में रोशनी के बीच खेला गया यह पोलो का पहला मैच था। सितंबर जयपुर पोलो सीजन 2026 की इस ऐतिहासिक रात ने परंपरा और आधुनिकता को एक साथ मैदान पर उतार दिया। करीब 45 साल पहले जयपुर में पोलो का एक ऐसा मुकाबला हुआ था जिसने खेल को इतिहास और परंपरा से जोड़ दिया था। दिवंगत महाराजा सवाई भवानी सिंह ने रात में पोलो मैच आयोजित कराया था। मैदान के चारों ओर खंभों पर रोशनी की व्यवस्था की गई थी, जबकि खिलाड़ियों को गेंद दिखाई दे इसके लिए विशेष ब्रास यानी पीतल की गेंद तैयार कराई गई थी। इस पीतल की गेंद के भीतर रोशनी के लिए जलती बाती रखी गई थी। रात के अंधेरे में रोशन होती गेंद के साथ पोलो खेलना उस दौर में अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। ये आयोजन केवल खेल का रोमांच नहीं था, बल्कि जयपुर की जो पुरानी खेल परंपरा है उससे भी जुड़ा हुआ था। ये मैच सिटी पैलेस के निकट चौगान स्टेडियम में खेला गया था, और इस बार यानी कि 3 सितंबर की रात को फ्लड लाइट्स में खेला गया पोलो का यह मैच काफी रोमांच भरा था।

कहते हैं जब जब जीवन में अंधेरा पड़ता है तब उम्मीद की एक किरण ज़रूर जन्म लेती है, और शायद इसलिए कृष्ण का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उम्मीद के जन्म की कहानी है। नंद के घर कान्हा आए तो गलियों में खुशियाँ छा गई। कहीं माखन की खुशबू थी तो कहीं बांसुरी की धुन, हर तरफ बस एक ही नाम था, वो था कृष्ण। भगवान कृष्ण को याद करते ही हमारे मन में उनकी मुस्कुराती हुई छवि आती है, लेकिन कृष्ण सिर्फ मुस्कुराना नहीं सिखाते हैं, वो मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनना सिखाते हैं। दोस्तों, हर साल जो हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं इसके पीछे एक सुंदर कहानी है जो कि हमें बहुत ही गहरा संदेश

देश भी देती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनका जन्म मथुरा में उस समय हुआ जब उनके मामा कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसके अंत का कारण बनेगी, और इसी डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। और फिर आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जन्म केवल एक बालक के जन्म के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय और अंधकार पर प्रकाश की उम्मीद के रूप में देखा जाता है। और इसी खुशी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, कृष्ण की झांकियां निकालते हैं और आधी रात को कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी सही रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। और नन्हे कान्हा की एक और बात हमें सिखाती है, जीवन का संदेश देती है कि जैसे वो माखन चुराते हैं, शरारत करते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, और महाभारत में वो अर्जुन को ज्ञान की शिक्षा भी देते हैं। यानी कि ये हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी खुशियां भी हमें ज़रूर जीनी चाहिए। मुस्कुराना कृष्ण से सीखिए, मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहिए, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, बस अपने कर्म पर विश्वास रखिए। यही वजह है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि आस्था और सही कर्म का संदेश देने वाला पर्व है। जहाँ धर्म की राह पर विश्वास हो वहाँ कृष्ण का साथ जरूर होता है। तो इसी के साथ आप सभी श्रोता बंधुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।

तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ। और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको अनेकों अनेक बधाइयाँ। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: चार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।

0: अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे वैकल्प प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम भारती, जिसका समय रहेगा 7:00, जिसमें आज एक चर्चा बगीचों की उचित देखभाल किसान भाइयों से की जाएगी। इसके अलावा एक भेंट वार्ता, किसानों की आय दोगुनी करने में उद्यानिकी का योगदान, श्री मुकेश कुमार चौधरी सहायक कृषि निदेशक उद्यान विभाग अलवर में इनसे एक भेंट वार्ता होगी। एक जानकारी किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में दी जाएगी, सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण। इसके अलावा होंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

मिनट पर समाचार संध्या और 9 बजे समाचार अंग्रेजी में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:15 से आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और आज की हमारी ये सभा संपन्न होगी 11:05 पर।

शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा 8:15, जिसमें आज आप सुनेंगे लोक गाथा श्री कृष्ण अवतार। गायक कलाकार होंगे सागर दास और उनके साथी। 8:45

हमारी कल की सभा में सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 6:05 पर भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा वंदन वार, 6:30 बजे कार्यक्रम विवरण सुनवाया जाएगा, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, संगीत सरिता का समय रहेगा 6:45। कार्यक्रम नमस्कार अलवर आप सुनेंगे 7:00, 7:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा 8:15, 8:30 आप सुनेंगे बातें फिल्मों की, सुर का आराधक येसुदास, कार्यक्रम में स्वर व आलेख होगा अर्चना जैन का और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता होंगे श्री शिव कुमार शर्मा।

सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, और युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का यह सतीश का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

वाजिद अली का गाया ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुंबई मिरर। और आइए सुनते हैं चिंतामणि सूरदास फिल्म का एक गीत रविंद्र जैन और उनके साथियों की आवाज़ों में।

संत सूरजदास जी का लिखा यह गीत रविंद्र जैन ने संगीतबद्ध किया। आवाजें रविंद्र जैन और उनके साथियों की थी। फिल्म का नाम था चिंतामणि सूरदास। और आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

संत सूरजदास जी का लिखा यह गीत रविंद्र जैन ने संगीतबद्ध किया। आवाजें रविंद्र जैन और उनके साथियों की थी। फिल्म का नाम था चिंतामणि सूरदास। और आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

गीत को लिखा था आर किरण ने, संगीत दिया राम लक्ष्मण ने, आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां। और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। 41 जिलों के 10,245 वार्डों के लिए निर्वाचन आयोग ने आज निर्दलियों को चुनाव चिन्ह दिए। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं के 77 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अलवर के रिटर्निंग अधिकारी अंबालाल मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उम्मीदवारों को लॉटरी सिस्टम के जरिए चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं।
1: आज यानी 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को, जो कि 65 वार्डों में हैं, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनको चुनाव प्रतीक आवंटन का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी हैं, उनको तो उनके जो प्रतीक राजनीतिक दल के हैं वो आवंटित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि ऑप्ट किया हुआ है, तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है और लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहाँ चला गया है। और शेष प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस है, यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल जाएंगे।
0: इस बीच चुनाव का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम पर पहुंचने लगी है।

भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी रैलियों और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी पर मंदिरों में भी प्रत्याशियों को मतदाताओं से पक्ष में वोट करने की अपील करते देखा गया। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल उदयपुर संभाग के दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। वे भीलवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। वे निकाय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। गौरतलब है कि 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान के लिए कुल 38,891 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मंच के दौरान न्यायिक वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की उस उपलब्धि को राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इसरो ने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग कर सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 2 शिक्षकों सहित 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में चाकसू के टुमली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉ. वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉ. दिव्येंदु सेन को ये पुरस्कार मिलेगा। डॉ. वर्तिका को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए तथा डॉ. दिव्येंदु को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रशिक्षित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने इस अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों का जीवन गढ़ने वाला प्रेरक बताया। श्री बागड़ ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और संस्कार निर्माण से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में ACB से संबंधित लंबित मामलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी चर्चा की गई। दोनों अधिकारियों ने आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता से जुड़े विषयों पर गंभीरता के साथ काम किए जाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान के जन्म की खुशियां साझा करने के लिए सुबह से ही भक्तों में उत्साह बना हुआ है। लोग व्रत रखकर उपासना कर रहे हैं। आधी रात बाद जन्मोत्सव के साथ ही बधाइयां और विधिवत पूजा अर्चना के साथ पंच प्रसादी बांटी जाएगी। जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई है और विशेष आयोजन रखे गए हैं।

0: ब्रज क्षेत्र से लगते भरतपुर और डीग जिलों में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे डीग संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिले के पुंछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपरिवार दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी डी के पोछरी का लोटा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण पोशाक प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामवन के कोटउपर स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामवन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: राजसमंद के श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि परंपरागत रूप से 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर नादवरा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: राजधानी जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद देव जी सहित अंदरूनी शहर के मंदिरों में देर रात तक होने वाले आयोजनों को देखते हुए जयपुर मेट्रो की संचालन अवधि रात 1 बजे तक बढ़ा दी गई है। अंतिम मेट्रो मानसरोवर से रात 1 बजे रवाना होगी, जबकि बड़ी चौपड़ से ये 1:10 पर चलेगी। शहर में कल नंदोत्सव के आयोजन और शोभा यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर तेजी आई है और कई शहरों पर मॉनसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर और पूर्वी जिलों में आज सुबह से ही घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर बरसात होती रही। बारा और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिनों से हो रही बरसात से एक बार फिर नदी नालों में पानी की आवक हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
3: जिले में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जल स्तर 29 फीट पर पहुँच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जल स्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार नए बने तंत्र का प्रभाव 6 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। विभाग ने भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगे प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 10 साल से कम पुरानी डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगी रोक पर अंतरिम राहत दी है। न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन विभाग के आदेश पर अगली सुनवाई तक परिवहन विभाग, वायु गुणवत्ता और भरतपुर परिवहन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में पाली जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि जिले को 92.96 अंक हासिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों तक योजना की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित करने के साथ नियमित मॉनिटरिंग के चलते पाली को ये उपलब्धि मिली है। रैंकिंग में दूसरा स्थान राजसमंद जिले को हासिल हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख तैयार किया है लक्ष्मीचंद नागर ने। 12 में नगर निकाय आम चुनाव के अंतर्गत नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी 6 निकाय क्षेत्रों में 905 अभ्यर्थियों ने कुल 1030 नामांकन पत्र भरे। जिले में अंतिम दिन तक कुल 1083 अभ्यर्थियों ने 1225 नामांकन फॉर्म भरे हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त नामांकन पत्रों की 1 सितंबर को संवीक्षा की गई, जबकि कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए गए। चुनाव चिन्हों का आवंटन आज किया गया। पहले चरण में 12, अंता और सीस वाली में 9 सितंबर को तथा दूसरे चरण में छबड़ा, मांगरोल और अटरू में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। नगरपालिका चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा ने बीते दिनों सीसवाली नगरपालिका क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने मतदान केंद्रों और मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए 10 मतदान बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिलेवासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। बीते दिनों कृषि उपज मंडी में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर बीते दिनों 2 दिवसीय सघन HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के पहले दिन जिले भर में 611 बालिकाओं का टीकाकरण किया। जिले में अब तक 5621 बालिकाओं का टीकाकरण हो चुका है। CMHO डॉक्टर जगदीश कुशवाहा ने बताया कि HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया, तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वादा किया। रक्षाबंधन की झलक चुनाव विभाग में भी देखने को मिली। चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वीप रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं ने भाइयों की कलाई पर वोट राखी बांधकर उन्हें आगामी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने का संकल्प दिलाया। बीते दिनों कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर मादा चीता वीरा को जिले के शाहबाद वन क्षेत्र में देखा गया। उसका मूवमेंट बेहटा गांव के जंगल के निकट खेतों के आसपास देखा गया। पिछले करीब 2.5 साल में यह तीसरी बार है जब वीरा का मूवमेंट जिले के जंगलों में देखा गया है। बीते दिनों जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट सक्षम सखी शुरू किया। इसके तहत जिला मुख्यालय पर जिले का पहला ग्राम श्री मार्ट खोला गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण दीदी की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से बनाए इन समूहों का उद्देश्य महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना है। बीते दिनों श्रावण मास के चलते जिले में कांवड़ यात्राओं की धूम रही। धुतरिया गांव में शिव भक्तों की ओर से दूसरी कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। कांवड़ यात्रा अंता के नागदा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा।

0: श्रोत्रा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आवण रे साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशों रा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नवी दिल्ली में शुरू। सुप्रीम कोर्ट री मेजबानी में न्यायिक अहलकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। मिंद्रा में जन्मोत्सव री तैयारियां। और राज्य में अगुणी और दिखनाद जिला में बिरखारी गतिविधियां में तेजी। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अब समाचार विगतवार। प्रदेश में 309 नगरीय निकाय में होवण वाला चुनाव सारू उम्मीदवार ने आज चुनाव चिन्ह दे दीजिया है। 41 जिला रा 10,245 वार्ड सारू निर्वाचन आयोग आज निर्दलीय और तीजा मोर्चा रा दला ने चुनाव चिन्ह बांटिया। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकावां रा 77 वार्ड में निर्विरोध चुनाव वियो है। अलवर रा रिटर्निंग अहलकार अंबालाल मीणा बतायो कि निर्वाचन आयोग रा निर्देश माथे उम्मीदवार ने लॉटरी सिस्टम री मार्फत चुनाव चिन्ह बांटी जिया।
1: आज यानी 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को जो कि 65 वार्डों में है जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनको चुनाव प्रतीक आवंटन का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी हैं उनको तो उनके जो प्रतीक राजनीतिक दल के हैं वो आवंटित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि ऑप्ट किया हुआ है तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है और लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहाँ चला गया है। और शेष प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस है, यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल गया।
0: ई बीच चुनाव रो दिन नजदीक आवण रे साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम माथे पुगण लागी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास दला खुदरा उम्मीदवार ने जीतावण सारू ठावा नेताओं ने मैदान में उतारनो शुरू कर दियो है। उम्मीदवार रैलियां और नुक्कड़ सभावां रे साथ ही घर घर जार लोगों मिल रहा है। आज जन्माष्टमी माथे मिंद्रा में उम्मीदवार मतदाताओं पगस में वोट करण सारू अर्ज करता दिखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई काले उदयपुर संभाग रा दौरा माथे रहेला। वे भीलवाड़ा माए रोड शो माए भेड़ा वेला और निकाय चुनाव ने लेर जन नुमाइंदा और पार्टी ओहदादारा री मीटिंग लेवेला। ध्यान जोग है कि 9 और 11 सितंबर ने दो चरणा माए वोट सारू कुल 38,891 उम्मीदवार मैदान माए है। वोटों की गिनती 14 सितंबर ने वेला और अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने वेला। ब्रिक्स देशों रा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नवी दिल्ली में शुरू हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ई मंच री मेजबानी कर रही है और 3 दिन रो मंच न्याय बंदोबस्त अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा प्रौद्योगिकी और सतत विकास समेत कई मुद्दा माथे बतल रो मौको देवेला। इनमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों रा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायिक प्रमुख और ठावा न्यायिक नुमाइंदा हिस्सों ले रिया है। इस दौरान भारत रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान रा न्यायिक नुमाइंदा मंडल रा प्रमुख रे साथ दो पक्षारी मीटिंग करेला। भारत अंतरिक्ष हलका में एक और मोटी कामयाबी हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तड़के श्रीहरिकोटाऊ GSLV-F17 रॉकेटरी मार्फत देश रा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 रो कामयाब प्रक्षेपण करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो री ई कामयाबी ने देश सारू मान रो बगत बतावता कहो कि आ कामयाबी भारत रा अंतरिक्ष हलकारी ठावी नवाचार और बदता बूता ने दर्शावे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कामयाब प्रक्षेपण री सराहना करता देश रा वैज्ञानिका ने शुभकामनावां दी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ई कामयाबी माथे कहो कि वो मिशन भारत री पृथ्वी अवलोकन बूता ने और मजबूत करेला। वणा कहो कि इसरो ई प्रक्षेपण

0: वाहन ने काम माय लेवता सब भारी उपग्रह ने स्थापित करिया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पांच रे चालू वन जावण पाथे ओ भू कक्षाओं भारत रो पहलो समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जायला जो देश सारू महत्व रणनीतिक डेटा दे सकेला। शिक्षक दिवस रे मौके काले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश रा दो शिक्षक समेत 82 शिक्षक ने सम्मानित करेला। नवी दिल्ली में होने वाला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसा में चाकसूरा टूमली का बासरी उच्च प्राथमिक विद्यालय री डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल रा डॉक्टर दिव्यंतु सेन ने ओ इनाम मिलेला। डॉक्टर वर्तिका ने नवाचार तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण सारू और डॉक्टर दिव्यंतु ने गांवाई हल्कारा पडेसरा ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखावण देवण सारू ओ इनाम दियो जायला। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ई मौके शिक्षका ने शुभकामना दी है। वर्णा पहली रा राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने याद करता शिक्षका ने पढ़ेसरा रा जीवन गढ़न वाला बताया। श्री बागड़े शिक्षकाओं पढ़ेसरा रा बौद्धिक बुता ने बधावण और संस्कार पैदा करण जुड़ी शिक्षा देवण री अरज करी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक गोविंद गुप्ता आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मिलिया। इस दौरान प्रदेश में एसीबी जुड़िया विचारू मामला और घूस रे खिलाफ सरकारी जीरो टॉलरेंस नीति माथे बतल करी। दोनों एहलकार आवता निकाय चुनाव रे दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता जुड़िया मुद्दा माथे सावचेती रे साथे काम करण माथे जोर दियो। लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करण में पाली जिलो राज्य में पहली ठोड़ माथे रियो है। जिला चिकित्सा एहलकार डॉक्टर विकास मारवाल बतायो के जिला ने 92.96 अंक हासिल किया। वना बतायो के लाभार्थियों ताई योजना री जानकारी एर पहुंच तय करण रे साथे बरोबर मॉनिटरिंग रे चालता पाली ने आ कामयाबी मिली है। रैंकिंग में दूजी ठोड़ राजसमंद जिला ने हासिल हुई है। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रो त्यौहार आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव रे साथ मनायो जावे। भगवान कृष्ण रा जन्म री खुशियां साझा करण सारू सवाराओं श्रद्धालुओं में उमाव बण्योड़ो है। लोग व्रत राख ने उपासना कर रिया है। आधी रात पछे जन्मोत्सव रे साथ बधाइयां और विधिपूर्ण पूजा रे साथ पंच प्रसादी बांटी जायला। जयपुर रा गोविंद देव जी करोली रा मदन मोहन जी नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मिंदर समेत छोटा मोटा कृष्ण मिंदरा में जन्मोत्सवी झांकियां सजाई जी है और खास आयोजन वे रिया है। ब्रज हल्काओं लागता भरतपुर और डीग जिला में जन्माष्टमी ने लेर लोगा में न्यारोई उमाव देखने मिल रियो है। हमारी डीग खबर नवीस बतायो के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिला रा पूंछरी का लोठारा श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार समेत दर्शन करने प्रदेश री खुशहाली समृद्धि री कामना करी।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी डी के पूंछरी का लोटा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण पोशाक प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामन के कोटउपर स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: राजसमंद राज श्री नाथजी माय जन्माष्टमी माथे आधी रात रीत मुजब 21 तोपान इसला में दी जायला। और ब्यूरो हमारा खबर नवीसू।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर नादवारा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: राजधानी जयपुर में जन्माष्टमी रे मौके गोविंद देव जी मिंदर समेत शहर मायरा मिंदरा माय देर रात ताई होने वाला आयोजना ने देखता जयपुर मेट्रो रा संचालन भगत ने रात 11 बजे ताई बधा दीजिया है। मेट्रो मानसरोनु रात 1 बजे रवाना वेला, जद के बड़ी चौपड़ू आ रात 1:10 माते रवाना वेला। शहर माय काले नंदोत्सव रा आयोजन और शोभा यात्रा ने देखता यातायात

0: जरूरी बंदोबस्त करी जा है। नबे मौसम प्रदेश में बिरखरी गतिविधियां में उतार चढ़ाव रे बीच आज फिरों कई हल्का माए मानसून मेहर बांध रही हो। राजधानी जयपुर एर अगुणी जिला में आज सवार में घना बादल छाई जा रिया एर रुक रुक ने बिरखा वेती रही। बारा एर हाड़ोती हल्कारा जिला में आज सवार में रिमझिम बरसात रो दौर चाल तो रियो। सवाई माधोपुर माए लाडला दो दिनों वेरी बिरखाऊ एक कर फेरू नदी नाला माए पानी री आवक वेरी है। मारा खबर नवीस बतायो के जिला माए कई ठोड़ा जल भरावरा हालात पनियोड़ा है।
1: जिले में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जल स्तर 29 फीट पर पहुंच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जल स्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: बंगाल री खाड़ी माए बनिया कम दबाव रा सिस्टम रा असर 24 जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट काढ़ी जो है। मौसम महकमा मुजब नुआ बनिया तंत्र रो असर 6 सितंबर ताई चालता रेवण री आस है। महकमो भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, एयरकोटा संभाग रा घनकरा हल्का माए बिरखारे साथे तेज हवा चालन री आस जताई है। कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए भारी बिरखाई वह सके है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आवण रे साथे प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशों रा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू। सुप्रीम कोर्ट री मेजबानी में न्यायिक अहलकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। मिंद्रा में जन्मोत्सव री तैयारियां। और राज्य रा अगुणी और दिखनाद जिला में बिरखारी गतिविधियां में तेजी। इन रे साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारू आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। शाम के 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती सुन बाड़ा सभी किसान भाई बहना को भाऊ भाई की ओर सु गणी गणी राम राम किसान भाइयों। और आज जन्माष्टमी का पर्व है और हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसीलिए किसान भाइयों को कृष्ण जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी ओर से सभी को राम राम। हाँ तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ग्राम भारती में हमारे यानी कि जो बगीचों की उचित देखभाल कैसे करें, उसके बाद सुनाएंगे जरूरी संदेश, फिर करवाएंगे किसान भाइयों का मनोरंजन, फिर सुनवाएंगे आपको भेंट वार्ता किसानों की आय दोगुनी करने के उद्यानिकी का योगदान कैसे रहा है। श्री मुकेश कुमार चौधरी सहायक निदेशक उद्यान विभाग अलवर से भेंट वार्ता है और फिर करेंगे जानकारी की बातें। तो आइए सबसे पहले अपन बातें करते हैं भाइयों, यानी कि अपने बगीचे की उचित देखभाल कैसे करें। नए जो फलदार पौधे लगाने से लेकर के और फल देते रहने तक पौधे की देखभाल करना अति आवश्यक है। हाँ तो किसान भाइयों, जिन भाइयों ने बगीचे लगा रखे हैं और उनकी समय समय पर देख रेख करते रहना चाहिए, जिससे कि अपन को अच्छी इनकम अच्छी आय मिल सके। तो इसमें क्या है कि जैसे साधारण देखा गया है कि फल उत्पादन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पौधे का संरक्षण पर ध्यान कम देते हैं और जिसके कारण पैदावार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, पड़ने से उत्पादन कम होता है और प्रारंभ से लेकर अंत तक फल वृक्षों को देख रेख करने की अति आवश्यकता है। तो किसान भाई देखिए, हमको बगीचे में किन किन चीज़ों का समय समय पर देख रेख करनी चाहिए जिससे कि अपन को अच्छी उपज और अच्छी पैदावार ले सकें। बगीचे की देखभाल के लिए समय समय पर कटाई छटाई का विशेष ध्यान रखना होता है और खाई और उर्वरक और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करने से हार्मोन्स का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। जैसे

किसान भाइयों, निराई गुड़ाई और जुताई करना जरूरी होता है। समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करना जरूरी होता है। मौसम के दुष्प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए और कीट व्याधियों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो किसान भाई, बगीचे के जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बगीचे में रिक्त स्थानों की कहीं काफ़ी जगह रह जाती है, तो उनकी पूर्ति करना जरूरी होता है। कई बार बिना सोचे समझे असावधानीपूर्वक फल फासले पर पौधे रोपण का अनियंत्रण पौधे लग जाते हैं, जिससे पौधे की वांछित मात्रा में पोषण, जल, प्रकाश, हवा नहीं मिल पाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन कम मिलता है और आसपास जो लगाए गए पौधे हैं हटाकर उनके स्थान पर विधिपूर्वक उचित फासले रखते हुए अगर नए पौधे, जिन स्थानों पर नवरोपण पौधे मर गए हों उन स्थानों पर नए पौधे लगाए जाएं, और बगीचे की देखभाल में कटाई छटाई का महत्व आवश्यक है। और प्रारंभिक अवस्था में पौधे को सही आकार देना, इसके लिए तने को 2-3 फीट की ऊंचाई तक शाखाएं नहीं निकलने दें। इसके ऊपर 4 दिशाओं में 4-5 मोटी शाखाएं निकलने दें। ऐसे करने से पौधे की निराई गुड़ाई करने के बाद भी फल लगना पर तुड़ाई करने के आसानी रहती है। किसान भाइयों, पुराने बगीचे की कटाई छटाई में वायु और प्रकाश समुचित मात्रा में प्राप्त होने से बीमारी और कीट से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अधिक उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। कटाई छटाई करते समय सूखी, रोगग्रस्त और कमजोर शाखाएं, जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं हुए उनको काट देना चाहिए। काट छांट के तुरंत पश्चात काटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पानी में गाढ़ा घोल मिलाकर के शाखाओं पर लेपन कर देना चाहिए। विभिन्न फल वृक्षों में उनकी आवश्यकता अनुसार वांछित कटाई छटाई करके नए कलों का सर्जन कर वृक्षों की ढांचे को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे कि आम, नींबू प्रजातियों में कटाई हेतु मुख्य रूप से सूखी, रोगग्रस्त टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को 2 वर्षा होने से पूर्व काट दें, ताकि वृक्षों में हवा और रोशनी का प्रवेश हो सके। अमरूद में विशेषतर किसान भाइयों, काट छांट नहीं होती है, परंतु फल नई शाखाओं पर ही लगते हैं। इसलिए पुरानी शाखाओं को 1 फीट छोटा कर देवे। मार्च माह में रोगग्रस्त सूखी अवांछित उलझी हुई टहनियों को काट देना चाहिए। जैसे कि बात करें अपन भाइयों बेर के बारे में, तो फल में नई टहनियाँ लगते हैं और पौधे अप्रैल मई माह में सुस्तता अवस्था में रहते हैं। इस माह में उनके काट छांट कर देनी चाहिए। पुरानी टहनियों को 50-60% काट देनी, ताकि फल अच्छे आएंगे। नई टहनियों पे ज़्यादा जो कोपल होती हैं उन पे अधिकतर फल अच्छे लगते हैं। इसी के साथ किसान भाई, देखो निराई गुड़ाई का भी अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और जो अपना बगीचा है उसमें निराई गुड़ाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि निराई गुड़ाई में भूमि की जुताई करने से भूमि जो खाली जगह होती है उसकी जुताई करके और उससे क्या एक भूमि उर्वरक हो जाती है, उससे अच्छी पैदावार मिलती है अपन को। तो इन चीज़ों का भी किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना चाहिए। रही बात खाद और उर्वरक का महत्व, फलदार पौधों को देखो और पौधों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृक्ष स्थानीय रूप से कई वर्षों तक एक ही स्थान पर लगे रहते हैं और उनके निरंतर होने पर बढ़वार और फल फूल लगते हैं। अतः इसलिए सिफारिश के अनुसार खाद और उर्वरक सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करते रहना चाहिए। खाद और उर्वरक को थामलों में डालकर मिट्टी से मिलाकर सिंचाई कर देनी चाहिए। इस हेतु खाद और उर्वरक देने से पूर्व थामले को खोद लेना चाहिए और उस हेतु खाद उर्वरक देने से पूर्व थामले को खोद लेना चाहिए। खुराक लेने वाली जड़ों तने से दूर रहती हैं, इसलिए उनके अच्छे से खोद के उनको एक बार जमीन को उर्वरक बनाकर उसमें खाद वगैरह डालना चाहिए किसान भाइयों। रही बात बगीचे में सिंचाई का महत्व की, तो सिंचाई की अपन बात करें तो बगीचे में सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नए पौधे के लिए हल्की किंतु बार बार इस प्रकार की सिंचाई करनी चाहिए कि जड़ क्षेत्र नम बना रहे। पुराने पौधे में वर्षा ऋतु में बाद में नियमित अवधि में अंतराल सिंचाई करनी चाहिए। पर्याप्त सिंचाई नहीं होने पर भी फलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी किसान भाई ध्यान रखना है अपन को सिंचाई का भी। सिंचाई की बात करें अपन, जैसे अमरूद में सिंचाई कब करनी चाहिए, गर्मियों में 7-10 दिन के अंतराल में और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। आम की बात करें तो आम में फल बनने के पश्चात 10-15 दिन तक सिंचाई करें। और बात करें नींबू की, तो नींबू में फूल खिलने के 1 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और फूल खिलते ही सिंचाई करनी चाहिए। जैसे बात करें अपन पपीते की, तो गर्मी में 7-10 दिन व सर्दी में 15-20 दिन के अंतराल में पपीते में बगीचे में सिंचाई करनी चाहिए। बात करें किसान भाई आंवले की, तो आंवले में मार्च में नई कोपल निकलने तब 15 दिन के अंतर में जून माह में सिंचाई करें। और बात करें अनार की, तो अनार इन पौधों को

0: बराबर नमी की आवश्यकता होती है और फल बनते समय नमी की कमी हो जाने से फलों को फटने की संभावना रहती है। तो इसलिए अनार का बगीचा किसी भाई ने लगा रखा हो तो उसको समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसी के साथ किसान भाइयों देखो, इन जो बगीचे में लगती हैं लगाए हैं अपन, उनमें क्या है कीट व्याधियों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। समय समय पर जैसे कीट व्याधि लगते हैं तो उनका अगर नियंत्रण अपन करेंगे तो अपन अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इनमें कई तरह के कीट व्याधि लगते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे मिलीबग कीट नियंत्रण कीट होता है, फल मक्की कीट होता है, छाल भक्षक कीट होता है। इस तरह के जो कीट लगते हैं इनका विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि कई बार रोग भी लग जाते हैं, जैसे छाछा रोग लगता है और क्या नाम से तुम्हारे किसान भाइयों बेर की पत्ती में जैसे झुलसा रोग लगता है, आंवले में रोली रोग लगता है, तो इन रोगों का भी विशेष ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। समय समय पर इनका उपचार करना जरूरी होता है। जैसे बात करें अपन फल मक्खी कीट, प्रभावित फलों में भूमि में गहरा गाड़ देवें और मेलाथियन 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके किसान भाई छिड़काव करना चाहिए। जैसे छाल भक्षक कीट है, इसको जैसे पौधे में छेद करता है तो उस छेद में किसी पिचकारी की सहायता से 3 से 5 ml केरोसिन के तेल छेद में डाल दें और उसके बाद गीली मिट्टी से उसको बंद करते हैं तो उस कीट जो छाल भक्षक कीट है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरह अपन बात करें किसान भाई आम का माथा बंधना सबसे ज़्यादा बीमारी है। जैसे कि आम के पौधे का अगर माथा बंध गया तो किसान भाई उसमें फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है, उसका जरूरी है, उसको समय समय पर उपचार करते रहना चाहिए तो ही अपन अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे बात करें रोगों के बारे में, जैसे छाछा रोग, नई टहनियों पर पुष्पक्रम पत्तियों तथा फलों पर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता, इसके प्रकोप से पुष्प कच्चे फल गिर जाते हैं। नियंत्रण हेतु किसान भाई इसमें 2 से 5 ग्राम गोलांसिन गद्दक अथवा कैराथियन LC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो प्रथम फूल आने पर द्वितीय छिड़काव फल बनने तक करते रहना चाहिए। इसी तरह किसान भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखें अपन विशेष तो अपन अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे बेर में पत्ता झुलसा रोग है, आंवले में रोली रोग है, इनका समय समय पर उपचार करेंगे तो अपन अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई यह चर्चा अपनी जारी रहेगी, बाकी आगे के लिए सुनते हैं अब जरूरी जो अपना संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: हाँ तो किसान भाई ये तो सुना जरूरी संदेश, और आप किसान भाइयों को सुनवाएंगे भेंट वार्ता। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्यानिकी का योगदान क्या है, श्री मुकेश कुमार चौधरी सहायक निदेशक उद्यान विभाग अलवर से भेंट वार्ता। तो सुनिए किसान भाइयों ये भेंट वार्ता।
7: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को खूब खूब राम राम सा। किसान भाइयों आज का हमारा विषय है किसानों की आय दुगनी करने में उद्यानिकी का योगदान, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मुकेश कुमार चौधरी। आप सहायक निदेशक उद्यान हैं और आप कार्यालय उप निदेशक उद्यान अलवर में कार्यरत हैं। मुकेश जी हमारी ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से स्टूडियो में पधारने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद
7: मुकेश जी। देखिए किसान साथी

0: कृषि में, बागवानी में नई नई इनोवेशंस करते रहते हैं, नवाचार करते रहते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है एन केन प्रकारेण हमारी आय बढ़े, आमदनी बढ़े, ज़्यादा उत्पादन हो, उनकी आय दुगनी हो, उनका ये प्रयास रहता है। आप उद्यान की विशेषज्ञ हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्यान की के अंतर्गत कौन कौन सी वो उन्नत तकनीक है, हाईटेक बागवानी की तकनीक है, जिसको अपनाए अगर किसान तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसकी आय दोगुनी होने की ओर अग्रसर होगी।
1: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, बागवानी किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके तहत जो किसान हैं वो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं, जैसे कि आपके बगीचा स्थापना है, फल बगीचा स्थापना, और जो हाई वैल्यू जो वेजिटेबल्स हैं, उच्च मूल्य वाली जो सब्जियां हैं, उनकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अपना जो भी उत्पाद है उसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं उसको प्रोसेसिंग करके, और विभिन्न प्रकार की जो बागवानी फसलें हैं उनको उगा के, और विभिन्न प्रकार की जो नई
0: तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि एक तो बगीचा किसान भाई लगा करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और क्या ऐसी तकनीक है, हाईटेक बागवानी की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर किसान भाई अपना ले तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़े और उसकी आय बढ़े और उसकी पैदावार बढ़े? मुकेश जी,
1: जैसे देखो, मतलब सामान्यतः जो सामान्य अंतराल वाली जो बगीचा स्थापना है उसी की बात होती थी, कि आजकल जो कम अंतराल की है या जिसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं,
0: यानी कि आपका तात्पर्य है कम दूरी पे जो पौधे लगते हैं,
1: कम दूरी पे सघन बागवानी जो जिसको अपन बोलते हैं, वो भी चलन में है। इसमें होता ये है कि प्रति यूनिट आपके पौधों की संख्या लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, तो आपका जो उत्पादन है वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा जो और जो नई तकनीकें हैं उनके बारे में बात करें, तो खासकर भाई फल बगीचा स्थापना के अलावा नर्सरी स्थापित करके भी अपनी काफ़ी अच्छी आय बढ़ा सकते हैं। नर्सरी स्थापित करके फल बगीचों की या फूलों के पौधे तैयार करके वो उनको स्थानीय मार्केट में या जो लोकल लोग हैं उनको
0: सजावटी पौधे भी,
1: जी सजावटी पौधे भी वो तैयार करके बेच सकते हैं, तो उससे भी निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी। और इसके अलावा जो बात करें, तो आजकल देखो मशरूम की खेती जो है वो भी काफी चलन में है, और लोगों द्वारा काफी इसकी मांग भी की जा रही है, और लोग धीरे धीरे अपने जो फूड हैबिट है उसमें इसको लोगों ने लाना शुरू कर दिया है, तो इसकी जो स्थानीय बाजार है उनमें भी काफी अच्छी मांग रहती है, और इसका जो बाजार भाव है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो काश्तकार भाई मशरूम की खेती करके भी अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आज आप हमारे जिले के सभी किसान साथियों को दे रहे हैं। जी मुकेश जी, आप बगीचे की आप बात कर रहे थे, आपने मशरूम कल्टीवेशन की आपने बात की, आपने नर्सरी डेवलप करके भी किसान साथी आय दुगनी कर सकते हैं ऐसा भी आपने बताया है, और क्या क्या गुरु मंत्र हैं जिनसे किसान साथी अपनी आय बढ़ा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल। इसके अलावा जो बीज ये मसाला है या मसालों की खेती करके भी किसान भाई जो हैं वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही संरक्षित खेती का आजकल काफी चलन है, संरक्षित खेती को अपना के भी काश्तकार भाई अपनी आय में काफी अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। संरक्षित खेती की जो मुख्य संरचनाएं हैं उनमें ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस जिसको अपन बोलते हैं, सैनेट हाउस है, प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करना है, या सर्दियों में जो बागवानी फसलें हैं या सब्जी की जो फसलें हैं उनको शीत के प्रकोप से बचाने के लिए लो टनल का उपयोग करते हैं लोग, तो ये सारी जो चीजें हैं ये संरक्षित खेती के तहत ही आती हैं। पॉली हाउस से नेट हाउस की स्थापना करके और काश्तकार भाई काफी अच्छा मुनाफा अपने जिले में कमा भी रहे हैं, तो जो काश्तकार भाई अपनी उपज में या आप अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो वो उनको संरक्षित खेती की ओर भी अपना रुख निश्चित रूप से करना चाहिए।
0: तो क्या इस संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या राज्य सरकार भी कुछ किसानों की मदद कर रही है, कुछ अनुदान किसानों को देती है, सर इसके बारे में भी थोड़ा बताएं?
1: जी बिल्कुल, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान जो राज्य है इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से पॉली हाउस या सैनेट हाउस स्थापना करने पर सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 50%, जो SC ST के कैटेगरी के जो काश्तकार भाई हैं उनको इकाई लागत का 70%, और किसी भी श्रेणी का लघु सीमांत जो भी काश्तकार भाई है, चाहे वो जनरल का हो, SC का हो, ST का हो, उनको इकाई लागत पे 95% तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
0: सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये लघु सीमांत जो आप शब्द काम में ले रहे हैं इसका तात्पर्य अगर किसानों की भाषा में बात करें, जमीन की भाषा में बात करें, तो आप क्या मानते हैं?
1: देखिए लघु सीमांत काश्तकार का सामान्य अर्थ होता है जो भी छोटे जो काश्तकार भाई हैं जिनमें मतलब अगर जमीन के कवरेज के हिसाब से बात करें अपन, या एरिया के हिसाब से बात करें, तो सामान्य रूप से कम जमीन है, 8 बीघा से कम जमीन जिनके पास है सामान्यतः वो लघु सीमांत काश्तकार।

0: कैटेगरी में आते हैं।
1: जी। और आप संरक्षित खेती में किस चीज़ का चलन बहुत ज़्यादा आज अलवर ज़िले में देख रहे हैं, जिसको किसानों ने पकड़ा है और उसके पीछे किसान भाई अब जा रहे हैं, अपना रहे हैं, इसके बारे
0: जी
1: में थोड़ा
0: जी
1: बताएं।
0: पॉली हाउस और सैंडेड हाउस के लिए अपने जिले में खासकर भाइयों की काफी रुचि है और काफी लोग इसके लगाने के इच्छुक भी हैं। काफी अधिक मात्रा में लोगों ने इसके लिए आवेदन भी कर रखा है। तो निश्चित रूप से ये तभी संभव हुआ है जब इससे जिन काश्तकार भाइयों ने इस गतिविधि को अपनाया है, अपने यहाँ लगाया है और लगाने के बाद में एक अच्छा मुनाफा इससे कमाया है। तो उसी से एक जो पॉजिटिव जो संदेश है वो काश्तकार भाइयों के बीच गया है और काश्तकार भाई इस गतिविधि को अपनाने के लिए जागरूक हुए हैं और प्रेरित हुए हैं।
1: हम आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप ये संरक्षित खेती की जो ये संरचनाएं आप बता रहे हैं, चाहे वो पॉली हाउस हो, सैडनेट हाउस हो या अन्य संरचनाएं हो, उनमें किन-किन फसलों को लेना चाहिए, कौन-कौन सी फसलें ज़्यादा आमदनी देती हैं, ज़्यादा पैदावार देती हैं, कम रोग कीड़े लगते हैं, भरपूर उनमें उत्पादन मिलता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्या कौन सी फसलें ले
0: जी
1: सकते
0: जी
1: हैं?
0: बिल्कुल। देखिए अभी तो सामान्य रूप से ज्यादातर जो काश्तकार भाई हैं या हमारे देखने में जो आया है प्राय लगभग लोगों के द्वारा खीरे की खेती इन संरचनाओं के अंदर की जा रही है। पर मैं काश्तकार भाइयों से इसमें यही कहना चाहूंगा कि खीरे के अलावा भी इसमें और भी फसलें हैं जिनकी खेती अपन करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिनमें आप जो शिमला मिर्च है, स्पेशली जो रंगीन शिमला मिर्च है, लाल और पीली वाली, जिसका बाजार भाव काफी अच्छा बाजार भाव मिलता है, उसकी खेती भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें फूलों की जो कट फ्लावर्स हैं उनकी खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा अपन कमा सकते हैं और कुछ काश्तकार भाई अपने यहाँ जिले में इनकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा भी रहे हैं।
1: सर अभी आप बता रहे थे कि काफ़ी किसान भाई पॉली हाउस लगा रहे हैं और अधिकांशतः आपने ये भी कहा कि भाई खीरा लगा रहे हैं।
0: जी
1: अगर सभी किसान साथियों के पॉली हाउस लग जाएगा या खीरा ही लगाते रहेंगे तो क्या उनको जो भाव मिलेगा उस पर कुछ प्रभाव आएगा?
0: निश्चित रूप से देखिए अगर उत्पादन बढ़ेगा तो मांग तो उसके अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है। उत्पादन हम लोग हर साल बढ़ाते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो मांग के हिसाब से ही बाजार भाव हमको मिल पाएगा। अभी भी हम लोग फील्ड में कई बार जाते हैं तो इस तरह की शिकायतें हमको मिलती हैं। तो उन सब से को मेरा यही कहना है या मेरा यही निवेदन है सभी काश्तकार भाइयों से कि आप खीरे के अलावा जो दूसरे विकल्प हैं उन पे अपने आप को डाइवर्ट करिए, क्योंकि खीरा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और एक निश्चित मांग तक ही या एक निश्चित उत्पादन तक ही वो खपेगा आपका मार्केट में।
1: और इसके बाद इसके अलावा ये भी है कि आजकल आवागमन के साधन बहुत अच्छे होने से दूसरे जिलों का भी
0: जी जी जी
1: आप आपके यहाँ पे माल आ सकता है, खीरे का
0: बिल्कुल
1: या अन्य सब्जियों का।
0: आ भी सकता है और आ भी रहा है।
1: और हाँ बिल्कुल,
0: कि जिस भी पड़ोसी जिले में अगर भाव कम मिलता है
1: तो यहाँ
0: उनको,
1: ज्यादा
0: अगर
1: मिलेगा तो
0: हाँ
1: यहाँ पे
0: उनको अगर
1: लेके आ
0: पता
1: जाएंगे।
0: लगता है कि अलवर में ठीक भाव है तो यहाँ अपना माल भेज देते हैं और उसका सीधा सा असर ये आता है कि फिर जैसे बाहर का माल आता है यहाँ पे तो वो भाव कम हो जाता है।
1: सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे अलवर जिले में खरीफ की प्याज बहुतायत में होती है, अगर जितनी पैदा होती है उनमें से काफी जो हमारा प्याज है वो स्टोरेज के समय, भंडारण के समय, रखने के समय खराब हो जाता है, किसान भाइयों का खूब बचाव करते हैं, तो हम आपसे बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए भी क्या आप राज्य सरकार कुछ अनुदान दे रही है?
0: जी जी जी किसान भाइयों बिल्कुल, इसके लिए कम लागत प्याज भंडारण संरचना बनती है जिसपे कि आपको 50% या अधिकतम 87,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे है और इसके पर्याप्त मात्रा में जिले को लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो जो भी काश्तकार भाई इच्छुक हैं जो अपनी प्याज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भंडार गृह में भंडारित करके रखना चाहते हैं ताकि अच्छे भाव आने पर बाजार में उसको बेच सके तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रतिदिन सुनते रहिएगा किसान वाणी आकाशवाणी। जय जवान जय किसान।
2: हाँ तो किसान भाइयों ये तो सुनी भेंट वार्ता मुकेश कुमार चौधरी द्वारा और बातचीत करता थे मनोज कुमार जैन। और किसान भाइयों अब हम करवाते हैं आपका मनोरंजन, सुनवाते हैं लोक भजन।

हाँ तो किसान भाइयों, ये तो सुनवाया लोक भजन, और अब हम जानकारी की बातें करेंगे। तो इसमें किसान भाइयों देखो, सब्जियों के रोग और उन पर किस तरह नियंत्रण करें। तो इस समय जो सब्जियां किसान भाइयों लगा रखी हैं उनमें विशेष तौर से ध्यान रखना है अपन को, जैसे बैंगन है, टमाटर है, खीरा वगैरह है, जो भी सब्जियां किसान भाइयों ने लगा रखी हैं उनमें कीट नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। बरसात के दिनों में क्या है किसान भाइयों, इन दिनों में थोड़ी कीट व्याधियों का ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बारिश की वजह से इनमें कीट व्याधि ज़्यादा लगती हैं। तो जैसे बात करें अपन किसान भाइयों, देखो बैंगन के बारे में, तो बैंगन में एक अर्धपतन रोग होता है, वो ये है कि कवक जन्य रोग है। ये नर्सरी में उगे पौधे पर ही लगता है और रोगग्रस्त पौधा भूमि स्तर पर ही गलने लग जाता है। तो इसके लिए किसान भाई को क्या करना है, बीज को कैप्टन या थीरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, या फिर उगे हुए पौधे पर जिन्हें 0.2 घोल छिड़काव करें। तो इस तरह से किसान भाइयों, जैसे कि अब एक अगला जो रोग है वह है छोटी पत्ती रोग। यह माइकोप्लाजा जनन रोग है। रोगी पौधे से पत्तियां छोटी हो जाती हैं और गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं और इस पर फल नहीं लगता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, रोग कारक रोगजनक कीट को नष्ट करने के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए, तो जिससे कि अपन को रोग की निजात मिल जाए। इसी तरह जैसे बात करें अपन टमाटर के बारे में, तो टमाटर में भी किसान भाइयों अर्धपतन जो रोग लगता है वो भी बैंगन की तरह ही लगता है, और ये भी एक कवक जन्य रोग है, और इसके उपचार के लिए भी आपको बीज का कैप्टन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसी तरह किसान भाइयों, एक टमाटर में ये होता है झुलसा रोग, ये फफूंद जनक रोग है जिसमें पत्तियां पर भूरे से गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसके लिए किसान भाइयों क्या करनी चाहिए, ऐसी स्थिति में मेनकोजेब या जाइनेब 2 ग्राम या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव किसान भाइयों करना चाहिए, जिससे कि अपन को इस रोग की निजात मिल सके। और इसी तरह जैसे कि अपन को खीरा वगैरह की जो सब्जियां हैं उनमें भी कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे चूर्ण आसिता रोग है, ग्लान

और जड़गलन विगलन रोग है, वृक्ष रोग है, इस तरह के जो रोग होते हैं उनको समय समय पे किसान भाई देखते रहना चाहिए और अपन को अच्छी फसल और उपज लेने के लिए इनका समय समय पर उपचार करते रहना चाहिए। तो जैसे बात करें अपन जड़ विगलन रोग है, ये बीमारी मुख्यतः खीरा और खरबूजे में पाई जाती है। बीज पत्र और नई पत्तियां हल्की पीली होकर मरने लगती हैं और रोगग्रस्त पत्तियां और पूरा पौधा मुरझा जाता है। नए पौधे का तना अंदर की तरफ भूरा होकर सड़ जाता है। तो इसके लिए किसान भाई अपने को क्या करना है, रोगग्रस्त पौधा को खेत से निकालकर जला देना चाहिए या तो या गाड़ देना चाहिए, या फिर बीज को बायोस्टिक 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके और बोना चाहिए। तो इस तरह से किसान भाई ये तो रही जानकारी की बातें, और अब अपना समय भी पूरा होता जा रहा है तो इसी के साथ दे देते हैं मौसम की जानकारी। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता श्री नीरज भगत। और इसी के साथ किसान भाइयों लेते हैं इजाज़त। जय जवान जय किसान।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता कार्यक्रम ग्राम भारती सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

इंदिवर का लिखा गीत था, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ें थी, फिल्म का नाम था किशन कन्हैया। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था गीत गाता चल। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का नाम था, राजेश की आवाज़, सौम्या ने गीत को लिखा और संदीप चौटा ने संगीत दिया था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। आवाजें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

मजिदो सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, राजेश रोशन ने संगीत दिया, रविंद्र साठे की आवाज़, और फिल्म का नाम था युग पुरुष। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। पतंगा फिल्म से ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार है नीरज और संगीत शंकर जयकिशन का।

आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और उनके साथियों की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था लगान और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सर इसका चैनल है। लोक संगीत में आइए, आज आपको सुनवाते हैं लोक गाथा श्री कृष्ण अवतार। कलाकार हैं सागर दास और उनके साथी।

0: माता ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु उस दुष्ट कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी माता की पुकार सुनकर के विष्णु भगवान ने क्या कहा,
1: दुष्ट अधर्मी पापी ने मैं दंड देने तैयार, और जग माता

0: रात में कर एक ठिकाने ध्यान, समय आने पर तोड़ दूं अभिमानी का अभिमान।
1: पति माता चिंता मत कर, समय आएगा जब मैं उस दुष्ट का नाश कर दूंगा। अब विष्णु भगवान ने अपने नेत्रों से योग माया पैदा कर दी और योग माया को आज्ञा दी, जा तू चली जा, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं।
0: विष्णु जी ने पहले

उधर तो योग माया को भगवान भेज देते हैं और इधर महाराजा उग्रसेन के कंस की बहन देव की थी, उसके लिए वर तलाश करने की कोशिश की गई। पूछा मंत्री लोगों से कि भाई उसके लिए कोई वर बताओ, तो मंत्री लोग कहने लगे, सुनिए राजन गौर से ठीक वर्ण और जात, आजा थारी समझ में।

राजा उग्रसेन ने तत्काल उस सूरसेन के पुत्र वसुदेव की सगाई अपनी पुत्री वसुदेव की के साथ में कर दी और वहां से बरात सज धज करके और मथुरा में आ गई। जनवासे में ठहर गए वासुदेव महाराज, दोनों तरफ से हो रहे आनंद मंगल आज। अरे बरात डटन का बढ़ी

साथ में देवकी जी की शादी होगी। शादी होकर के जब उनको विदा करने लगे, आकाशवाणी सुन लई लई लगी बदन में आग, भेद पा लिया मैं गया सोवता जाग। तुम्ही उनको विदा करने के लिए जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू इस देवकी को क्या विदा कर रहा है? इस कंस, इस देवकी के गर्भ से एक संतान पैदा होगी जो तेरे को मारने वाली होगी।

अरे मेरे माँ का जाया वीर से तेरी पर्वत कितनी ओट, दया करे ना मुझ गरीब के लग जाएगी मेरे चोट। देवगिरी हाथ जोड़ के कंस से कहा, अरे भाई तू मेरा भाई है और तू मेरे पर रहम कर दे, तू मेरे को क्यों मारता है। उधर वसुदेव जी भी कहने लगे, भाई ऐसा है, इसके गर्भ से जो संतान तुम्हारे को मारने के लिए आकाशवाणी हुई है, तुम इसको मारने के अलावा दूसरा भी रास्ता है, एक काम करो, आप हमको कैद में डाल लीजिए, जो ही इसके संतान पैदा होगी उसको आप मार देना, इस तरह से भी तो आप इसको रख सकते हो। इधर देव की क्या कहती है, पैर पैर पदम गदा शंख चक्र गल में बैजंती माला, मनमोहन सिर मुकुट विराजे, आप पहुंच

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी

0: लोगों के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: लोक संगीत में आप सुन रहे थे लोक गाथा श्री कृष्ण अवतार। कलाकार थे सागर दास और उनके साथी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
6: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य

0: पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
5: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले

0: वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजयता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज़।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: अजी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।
1: बहुत

उसके जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे, मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए। अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं, और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता रहता।

उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होंठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।

0: विरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।
1: वो शाम कुछ

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता है।

उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम। वक्त

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ा दी,
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।